0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: Kaha aapka ye baja hi sahi.

RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: My dear friends, good morning. सुबह के 7:09 हुए हैं. You are listening to Radio Musti, आपका morning beat. Yes, दोस्तों, आज हम Wednesday 13th of May और मैं आ गई हूँ साथ देने के लिए. साथ रहूंगी मैं कब तक? 9 बजे तक. तो आपके भी दिल में बहुत सारी हलचल हो रही होगी. सुबह का स्ट्रेस होता है, सुबह में रश करना पड़ता है. रश करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से टाइम लेके अपना काम करो. हाँ, बस थोड़ा सा स्पीड अप कर लो. और हमारा म्यूज़िक है ना आपका साथ देने के लिए. अभी थोड़ी देर में गेम्स होने वाले हैं, हमारा बर्थडे ऑफ द डे होने वाला है, स्पोर्ट्स होने वाले हैं. ये सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं. बस साथ देते रहिए और स्माइल करते रहिए.
0: मॉर्निंग बीट, a good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2.
1: Radio Musti.
2: चलो भाई ला ला ला ला ला कर दिया, अब हा हा हा हा करने का समय हो गया है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए गेम लेकर आए हैं। देखा आपने हंस दिया ना, मुझे अच्छा लगा। ये जो आपके चेहरे पे स्माइल है ना, बहुत क्यूट है, इसको ऐसे ही सजा के रखो। चलो आपके लिए गेम लेकर आए हैं, एंड दिस गेम इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो अभी चल रहा है वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक 2026। ओके, सो वेलकम टू दिस स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक 2026। एंड ये जो कैंपेन है ना, दिस कैंपेन एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट रोड चेंजेस एंड प्रमोट मोर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टू सेव लाइव्स। द थीम हाईलाइट्स द सेफ्टी ऑफ पेडेस्ट्रियंस एंड साइक्लिस्ट अंडर द स्लोगन सेफ वर्किंग एंड साइक्लिंग फॉर सस्टेनेबल हेल्दी सिटीज। हर साल मोर देन 1.3 मिलियन पीपल लूज देयर लाइव्स ऑन द रोड्स वर्ल्ड वाइड एंड मिलियंस मोर आर इंजर्ड। सो पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट एंड मोटरसाइक्लिस्ट आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल रोड यूजर्स। रोड सेफ्टी रिमेन्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Respecting speed limits, wearing helmets and seat belts, being vigilant towards pedestrians and sharing the road responsibility are essential to reduce accidents. During this World Road Safety Week, several awareness activities are being organized by the Ministry of Land Transport to encourage citizens to adopt safer and more respectful behavior on our roads. और अभी के लिए समय हो गया है फॉर आवर स्पेशल क्वीज। जी हाँ, स्पेशल रोड सेफ्टी क्वीज, जहाँ पर हम आपके नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे, जहाँ साथ साथ हम कुछ सीखेंगे भी, हाउ टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। सो गुड लक टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। ओके, और अभी के लिए आपका सवाल। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन हमें सही जवाब दे सकता है। ऑलराइट, सो आपको मुझे बताना है, व्हाट डज डिफेंसिव ड्राइविंग मीन? व्हाट डज डिफेंसिव ड्राइविंग मीन? आपको हमें जवाब देना है ऑन 5499124 पूरे नाम और पते के साथ।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Le replay, vous connaissez? Le replay, c'est moins de papier. Pas besoin de remplir un nouveau coupon. À noter, les tirages du loto et du loto plus, c'est dans quelques heures. Le jackpot du loto plus est estimé à 11 millions de roupies et celui du loto à environ 25 millions de roupies. 25 millions de roupies au loto. Faites un arrêt chez votre détaillant si vous êtes déjà en déplacement.
4: Ceci est un communiqué de l'Autothèque. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
5: Béala, Wednesday Bazaar, Log et Côte Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
6: Et promotion bidoun balle. 500 grammes piment vert pour 59,95 €. 500 grammes papaye pour 19,95 €. And bucket 500 grammes raisin crimson pour 94,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 104,95 €.
5: Pas de prix là. Bazaar Moudiarou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
7: On est tous winners.
8: Quand les petits bébés, Moticone Prothèse lit compte tout kitsuse. Mais Astella donne les mondes digital, mo pas toujours connu au qui s'en l'a causé, ou soit qui l'a guetté. Heureusement, mo Rechasse Télécom, et Nam IT Protect, une solution pour prothèse aux enfants quand l'y online. Zodi, quand l'y le so potable ou l'on se tablette, mo l'esprit tranquille à cause sécurité mo enfants, peine à prix. Un enfant sans protection sur les réseaux peut être exposé à des dangers bien réels. Cyberbullying, des contenus violents, entre autres. Protégez votre enfant aujourd'hui avec Mighty Protect. Pour plus d'infos, appelez le 8900 ou visitez notre page mighty.mu.
9: Mighty? Mighty, c'est ça!
0: RM2
1: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, हमने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था. हमने सोचा सोच समझ कर जवाब दे दो और आपको मिल सकता है इनाम. जी हाँ, इनाम तो आपको ज़रूर मिलेगा और हर कोई जो पार्टिसिपेट करेगा उसको इनाम मिलना ज़रूरी है. तो चलिए, यहाँ पर हमने आपके लिए एक सवाल किया था हमने आपसे, और जैसा कि आपको बताया था कि विनर को मिल सकता है गुडी बैग वर्थ 3,000 to 3,500 rupees. ये गुडी बैग आपको कलेक्ट करना है आज फ्रॉम 14th of May, यानी कि कल से आप आकर अपना गुडी बैग कलेक्ट कर सकते हैं. बाकी डिटेल्स आपको हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो देगी. अभी फ़िलहाल के लिए सवाल क्या था, सवाल था व्हाट डज डिफेंसिव ड्राइविंग मीन. तो यहाँ पर हमें किसी ने सही जवाब दिया है, लेकिन अफसोस आपने अपना नाम नहीं लिखा और मेरे ख्याल से यहाँ पर आधा मैसेज जो है वो मिसिंग है. मैं आपका जो मैसेज है पढ़ रही थी एंड आपने बिल्कुल सही तरीके से, मेरे ख्याल से अगर मैं सही जा रही हूँ तो आपने अपना नाम महिंदर लिखा है, लेकिन बाकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है. महिंदर प्लीज़ आप मुझे अपना नाम, पूरा नाम फिर से भेजिएगा. वैसे आपका फ़ोन नंबर तो है हमारे पास. आपने लिखा है डिफेंसिव ड्राइविंग इज़ अ प्रोएक्टिव

0: approach to operate a motor vehicle that uses specific techniques to anticipate hazards, avoiding accidents. और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, driving while anticipating dangers or mistakes by others, avoiding risk and adopting a cautious attitude. तो ये है defensive driving. आपने बिल्कुल details के साथ हमें सही जवाब दिया है. महेंद्र आपको कहेंगे congratulations, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. और आपको मैं बताऊं कि आपको क्या मिल रहा है. वैसे हमारा जो गेम है ये स्पॉन्सर्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, और आपको मिल रहा है एक गुडी बैग वर्थ 3,500 रुपीज़. एंड ये आपको मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से. कंग्रेचुलेशंस. आपको हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट कॉल करेंगी और आपको बताएंगी कि आपको क्या करना है. सारे डिटेल्स आपको दिए जाएंगे.
1: RM2 Radio Musti.
2: The lights go black. Boom.
1: The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti. Feels a Musti.
0: एंड गाइस, जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका फ़ोन नंबर हमें ज़रूर भेजें और उनका नाम. जो लोग अपना बर्थडे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम उनको खुश करने के लिए एकदम सेट है.
3: जा

0: aide pour aller plus loin et une technologie de pointe pour avancer en toute sérénité. Parce que voir grand ne devrait pas coûter plus cher, le nouveau Mitsubishi Destinator est proposé à partir de 1 850 000 roupies. Venez le découvrir dans le showroom de Montebello et Forbach. Mitsubishi Destinator, the kind of space we all need.
1: Content, Popcorn?
2: Yeah!
1: Écoute ça! Bientôt, on pourra le plus content, Popcorn, encore! Parce qu'il Popcorn, pour faire la bouche douce! Un petit patience! Petit même!
3: Yeah!
4: RM2
5: Radio Musty.
4: A good beat for your morning show!
6: Come on!
4: RM2
5: Radio Musty.
7: एंड ये सभी समय हो गया है लोलू हाइपर मार्केट की तरफ से किसी को खुश करने का और उनको सरप्राइज करने का. चलिए इनसे मिलते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो अवनीश, अविश. यस अविश, गुड मॉर्निंग. आर यू फ्रॉम गुडलैंड्स? या वी कॉलिंग यू टू नो अबाउट द वेदर एट गुडलैंड्स राइट नाउ. इज इट रेनिंग? Hi.
8: Yes, it's raining. It's raining. It's good
7: land. Okay, it's raining happiness,
8: okay,
7: I guess.
8: It's raining
7: happiness, I guess. Hello?
8: Yeah,
7: Avish.
8: Sorry?
7: Yeah, Avish, it's raining happiness, I said.
8: It's raining happiness, yes.
7: Because it's a special day. It's your birthday. Oh my God.

0: from Radio Masti.
1: So you're live on Radio Masti, Avish, and I think you caught me actually. And बड़ा मुश्किल हो जाता है, सब आवाज़ पहचान जाते हैं और कोई भी ऐसे सवाल करेगा तो जाहिर सी बात है पकड़े तो जाएंगे ही. सो अवीश, इट्स योर बर्थडे एंड दिस सरप्राइज इज़ फ्रॉम योर वाइफ निष्ठा. एंड लेट मी टेल यू दैट हियर यहाँ रेडियो मस्ती पर हम रोज़ सुबह किसी न किसी को सरप्राइज करते हैं. सो टुडे इज़ योर बर्थडे एंड उन्होंने प्यार से बोला कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, आप उनको सरप्राइज करेंगी. सो हियर वी गो, हमने आपको कॉल किया. एंड लेट मी रिमाइंड यू दैट हमारा जो बर्थडे सरप्राइज है, इट्स फ्रॉम लोलो हाइपरमार्केट. एंड आपको एक वाउचर मिल रहा है जो कि वैलिड है आज और कल, यानी कि यू हैव टू कम टू एमबीसी विद योर आईडी कार्ड, या तो फिर आज या तो फिर कल आपको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. एंड हमारी पूरी एंटायर टीम की तरफ से वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. अवेश, यू वांट टू से समथिंग? यू वांट टू से समथिंग टू योर वाइफ?
2: थैंक यू निष्ठा, my lovely wife.
1: Oh la la.
2: And thank you to you all.
1: Thank you so much. Have a good day. Bye bye.
2: Thank you. Bye bye.
3: RM2 Radio Musti.
4: Hit music only.
5: Radio Musti feels a musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
3: Radio Musti in the mix.
4: चलो भाई, दिमाग के घोड़ों को तो बहुत भगा लिया आप। चलिए जानते हैं कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कौन भाग रहा है, कहाँ तक भाग रहा है, ये सब जानने के लिए वेलकम करते हैं हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद का। हेलो, गुड मॉर्निंग अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। प्रीमियर लीग में जाने के लिए आखिरी टिकट हल या सावंतन के नाम होगा। कल चैंपियनशिप प्लेऑफ सेमीफाइनल में एक्स्ट्रा टाइम में जाकर सावंत ने मिडल्सब्रो को 2-1 से हराया। फुल टाइम स्कोर 1-1 रहा। फाइनल 23 मई को वेम्बले स्टेडियम में। याद दिला दें, चैंपियनशिप से कोवेंट्री और इप्सविच प्रीमियर लीग में प्रमोट हो चुके हैं। वुल्व्स और बर्नले डिमोट हो चुके हैं। टोटनहम हॉटस्पर या वेस्ट हैम में से एक टीम चैंपियनशिप के करावास में जाएगी। स्पेन के ला लीगा में कल 3 मैच खेले गए। सेल्टा वीगो 2 लेवेंटे 3, बेटिस 2 एल्चे 1, ओसासुना 1 एथलेटिको मैड्रिड 2। इंडियन सुपर लीग में मोहन बगान और इंटर काशी के बीच मैच ड्रॉ 0-0। आज प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी खेलेगा क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ। मैनचेस्टर सिटी अभी आर्सेनल से 5 अंक पीछे है। आज जीत हुई तो केवल 2 अंकों का गैप होगा, बचेंगे केवल 2 मैच। पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि अंत तक लड़ेंगे, आर्सेनल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इटली के कोपा इटालिया में भी आज एक मैच है, इसका फाइनल है, ये होगा लाजियो और इंटर मिलान के बीच। फ्रांस के लीग एम, ब्रेस्ट स्ट्रासबूर, लांस पेरिस सैं जर्मेन, अभी इन दोनों के बीच 6 अंकों का फासला है। गोल डिफरेंस पेरिस सैं जर्मेन का बेहतर है। पेरिस सैं जर्मेन के लिए आज चैंपियन बनने की रात हो सकती है। योजे मोरिनो रियल मैड्रिड के एकदम करीब, उसके साथ जोड़ने के लिए तैयार है। फाइनल निगोशिएशंस चल रहे हैं। 13 सालों के बाद द स्पेशल वन फिर से रियल मैड्रिड में का बॉस बन सकता है। अभी मोरिनो बेनफिका में है। प्रीमियर लीग के सीनियर रेफरी हावर्ड हेब वेब ने कहा कि लिवरपूल के खिलाफ सिस्को के हाथ से लगने के बाद गोल स्कोर किया गया, पर वह के पास काफी एविडेंस नहीं था, वह का फैसला गलत रहा, उसने खुद कहा। इटालियन ओपन टेनिस की बात करें, इटालियन ओपन में अब क्वार्टर फाइनल्स के मैच खेले जाएंगे। कल कास्पर रूड ने मुसेती को हराया। सियस्टिया की जीत ओस्टापेंको पर। फिर होम फेवरेट और वर्ल्ड नंबर 1 यानी सीनर भी क्वालिफाई हुआ अपने हमवतन पेलेग्रिनो को हराकर। कोको गोफ ने अंद्रीवा को हराया। मेडवेदेव, रूबलेव, दाउदेरी, काचानोव भी जीत पाए। आज क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे। पेगुला का मुकाबला

0: Swiatek से कास्पर रूड खेलेगा कशानोव के खिलाफ। विटोलिना रिबाकिना जोदा दादेरी यानी सीना कल खेलेगा रूबलेव के खिलाफ और सियस्टिया का मुकाबला गोफ से ये कल होगा और मेदवेदेव का मुकाबला लांडालूस से, ये इटालियन ओपन है। क्रिकेट में आईपीएल के ग्रुप स्टेज में कल गुजरात टाइटंस ने 82 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद को मसल डाला। गुजरात टाइटन के 168 रनों के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम केवल 86 पर ऑल आउट हुई। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है। और एथलेटिक्स में अफ्रीकन चैंपियनशिप कल से शुरू हुए। शॉर्ट पुट में हमारा एथलीट, हमारा हमवतन बेयनॉ बैप्टिस्ट चौथा स्थान ले पाया, ब्रॉन्ज मेडल से केवल 2 सेंटीमीटर पीछे। 100 मीटर सीरीज में ओफेटो पीज और नोआ बीबी तीसरे स्थान पे आए। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: अरे अरे अरविंद, ऐसे कैसे आपको जाने देंगे, आपने वर्ल्ड कप के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं।
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी में सह मेजबान को होस्ट कनाडा के साथ स्विट्जरलैंड, कतर और बोस्निया हर्जेगोविना है। कनाडा तीसरी बार के लिए वर्ल्ड कप में है। मेक्सिको 1986 में केवल ग्रुप स्टेज, कतर 2022 में भी ग्रुप स्टेज से एग्जिट। की प्लेयर्स अल्फोंसो डेविस जो बायर्न म्यूनिख का खिलाड़ी हैं, जोनाथन दाविद जो यूवेंटुस में खेलता है और इस्माइल कोनी जो मार्से का खिलाड़ी हैं। स्विट्जरलैंड के लिए 13th वर्ल्ड कप अपीयरेंस। यूईएफए क्वालिफाइंग ग्रुप से अनडिफीटेड कोच मुरत यकीन को यकीन है कि द नाती बहुत आगे जाएंगे। 3 बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी ये टीम। ग्रानिट जाका, मैनुअल अकांजी, गोलकीपर ग्रेगो कोबे की प्लेयर्स हैं इस टीम में। कतर के लिए दूसरा वर्ल्ड कप, कोच हैं जूलियन लोपेटेगी, 2 बार एशियन चैंपियन, की प्लेयर अकरम अफीफ, एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर। बोस्निया हर्जेगोविना के लिए दूसरा फीफा वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन, प्लेऑफ से क्वालिफाई हुई हैं। द ड्रैगन्स अपने 26 खिलाड़ियों के नाम दे चुके हैं। एडिन जेको 40 साल का अनुभवी खिलाड़ी कप्तान है। सो ग्रुप बी में कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड, बोस्निया हर्जेगोविना के लिए, तो अब इसमें स्विट्जरलैंड क्वालिफाई होने के लिए फेवरेट है, पर फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, ये सभी लोग जानते हैं। सो दैट वाज ग्रुप बी इन वर्ल्ड कप 2026।
1: ये हुई ना बात, थैंक यू सो मच अरविंद।
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज़, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स रेडियो

0: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
1: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
0: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

नमस्ते, पेश है भोजपुरी के समाचार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर ही हिंसा, कर्मचारी लोग की कमी या सुरक्षा संबंधी समस्या के कारण बिगड़ कार्य परिस्थिति और अनुचित कार्य शर्त के लेके चिंता जतावता। पोर्ट लुइस में काल लगल एगो प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ अस्पताल में हिंसा के बढ़ल मामला की निंदा करलक। खासकर हाल में सामी के एगो टीम पर ही होल हमला के लेके संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितोहल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाई लोग के समन्वित उपस्थिति के संगे सुरक्षा मजबूत करे के मांग करलन। एक संगे ही संघ लंबा वक्त से इस क्षेत्र में कर्मचारी लोग की कमी, वेतन के भुगतान में देरी और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में योजना के अभाव के भी उल्लेख करलक। संघ के अध्यक्ष के आधुनिकता के देने कदम बढ़ावे के और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के डिजिटाइज करे के और नौजवान लोग के ई पेशा के प्रति आकर्षित करे खातिर वेतन प्रणाली में सुधार आने खातिर भी बल दिलन। मकसद है स्वास्थ्य सेवा के संगे संगे कर्मचारी लोग और मरीज लोग की सुरक्षा वो बेहतर करे के। हजारों पुरुष, महिला और लड़का लोग एकला बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर ले रहलन जा और लोग पाछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरल इतिहास छोड़ ले रहलन जा। आज वो शर्त बन मजदूरी के विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन के प्रोत्साहित करेला। आज से 15 मई लिया प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड विश्वविद्यालय में इंडेंटर्ड लेबर रूट पर एगो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन करता। 2011, 2014 और 2017 के बाद एकर चौथा संस्करण है, जेकर में कई गो देश लोग के शोधकर्ता लोग और विशेषज्ञ लोग भाग लिहन जा। 3 दिन के ई सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस शर्त बन मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में ओकर अनुभव और भूमिका परी विचार के आदान प्रदान और चिंतन के को केंद्र बनल रही। जहां पुलिस कर्मी लोग के हित के मुद्दा सार्वजनिक बहस के महत्वपूर्ण विषय बनल बाटे, हुए परी सरकार देने से काल खुलासा करल गल कि 63 गो पुलिस क्वार्टर्स हबी खाली पड़ल बा, कहे कि ओकर मरम्मत संभव नहीं बाटे। देश में जहां परी 608 गो पुलिस क्वार्टर्स बाटे, ओकर में से 545 गो में पुलिस कर्मी लोग के परिवार लोग रहत थवंजा। और हालांकि पुलिस कमिश्नर दफ्तर देने से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल एकर में कोनो नवीनीकरण या नवा आवास के निर्माण की कोनो विचार नहीं करल जाता।

प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम मकिनिया में अफ्रीका फोरवर्ड 2026 के सम्मेलन में भाग लेवथवन हुआ परी काल कई गो राउंड टेबल की अध्यक्षता संभलन काल हुआ परी ब्लू इकोनॉमी परी होल विचार विमर्श में प्रधानमंत्री बयान देलन आर उबोलन की अफ्रीका के देश लोग के बीच साझेदारी

0: के निकाले के बाद हांता वायरस के कोनो भी वृहद फैलाव दर्ज न होल बा। बाकी WHO के प्रमुख बोलेलन कि कोनो भी बखत हालात बदले सके, एकर खातिर सावधानी बरत के आवश्यकता बाटी। तय रहल भोजपुरी के समाचार, तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Débat climat peut continuer. Ben participant peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemen, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat en bains élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
3: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
4: RM2, Radio Musti, in the mix.
5: Lele, lele, maja, maja.

0: गुड मिला दीजिए, सुबह के 8:09 हुए हैं, आप भी मूड में आ गए होंगे, तो चलिए इसी के साथ जिंदगी के मिजल लेते चलिएगा। और अभी फिलहाल के लिए रेडियो मस्ती पर आप सुन रही हैं विदिता के साथ मॉर्निंग बीट। चलिए आपका मूड एकदम सेट हो गया होगा, हमारे सेकंड आवर में आपका वेलकम है। 8:10, चलिए ये भी जान लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहने वाला है, मिलते हैं अदिति से।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: आम हालत हमारे इलाके पर कुछ बादलों का असर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। देश के खासकर पूर्वी, दक्षिणी और सेंट प्लाटो वाले इलाकों पर रह रहकर बादल घिराएंगे और बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा, 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शाम को 5:42 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
4: Béala, Wednesday Bazaar, log écoute Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
5: Et promotion bidoun balle. 500 grammes piment vert pour 59,95 €. 500 grammes papaye pour 19,95 €. And bucket 500 grammes raisin crimson pour 94,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 104,95 €.
4: Pas de prix là. Bazaar Maudirou. Rendez-vous côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous Winners.
7: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों, ज़िंदगी में शांति से जीने के दो ही तरीके हैं। पहले ये कि उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन्हें आप भूल नहीं सकते, और दूसरा ये कि उन लोगों को भूल जाइए जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते। दिल में बोझ रखकर न नींद आती है न सुकून मिलता है। जो गुजर गया उसके बारे में बार बार सोचने से आज को ख़राब कर देते हैं हम। याद रखिए, किसी का बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को संभालना ज़रूर आपके हाथ में है। जो चीज़ें सुकून छीन ले उनसे दूरी बनाना कमज़ोरी नहीं, ये समझदारी होती है, क्योंकि आखिर में जो शांति, जो पीस ऑफ माइंड हमें चाहिए वो दौलत से नहीं, पैसों से नहीं, बल्कि सुकून से मिलता है। और ये आपको कोई दे नहीं सकता, ये आपको अपने अंदर क्रिएट करना होता है। कभी कभी सबसे बड़ा फैसला ये होता है कि आप खुद को चुनें, अपनी खुशी को चुनें, और जो चीज़ें आपको परेशान करें, आपको अंदर से तोड़ दें, उनको छोड़ना ही जरूरी होता है।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: RM2 Radio Musti. In the mix. Radio Musti, in the mix.

0: beat.
1: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
0: A good beat for your morning show. RM2,
2: Radio Musti.
3: And yes, my dear friends, welcome to Radio Musti, welcome to Morning Beat. कैसे हैं आप लोग, कहाँ तक पहुँचे, गाड़ी चला रहे हैं, जानती हूँ ड्राइव कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे, ऑफिस तक पहुँच गए, पहुँच ही गए होंगे, या कुछ लोग अभी भी बस में हैं और अभी सर्दी का मौसम है. मेक श्योर कि आप अपने कपड़े, गर्म कपड़े अपने साथ रखें, एंड मेक श्योर कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो अभी कभी जब बारिश होती है ना, तो एक जोड़ा कपड़ा या एक चप्पल आप हमेशा अपनी गाड़ी में रखिएगा. पता नहीं कब कहाँ कैसे उसकी ज़रूरत पड़ जाए. जब बारिश होती है तो इंसान भीग भी जाता है, ऑफिस पहुंचते पहुंचते भीग गए तो. इसीलिए जो लोग बस में भी जाते हैं, ऑफिस में एक लॉकर होगा, एक जगह तो होगी जहां पर आप एक जोड़ा कपड़ा या एक चप्पल रख सकते हैं, तो ये आप जरूर रखिएगा, पता नहीं कब काम आ जाए.

0: चलिए इसके साथ विश करते हैं नेहा को वेरी हैप्पी बर्थडे नेहा सितोहल, जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करी, उनकी मम्मी निर्मा, पापा बोध, सिस्टर श्रेया, उनकी मौसियाँ हेमा, मौसा धीरज, दिया, अश्विन, आदर्श, रीति और साथ में बेबी आध्या एंड पूरी फैमिली की ओर से उनको विश कर रहे हैं अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। चलिए इसी के साथ जो नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे वो होगा आपके लिए गुड मॉर्निंग यलेश, कैसे हो आप, आपका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे टू रवि शंकर नागा जो रहते हैं भुजे वैजे, उनकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ से ये है लीना फ्रॉम नुवेल फ्रांस। तो चलिए आप लोग भी अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है उनको विश करना चाहते हैं, नंबर है 5491294।
1: The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti. Feels a Musti.

0: भाई लिखने वाले ने तो दिल की धड़कन की बीट को ही बदल दिया। यहाँ पर तो हम धक धक करते, हमारा दिल यहाँ तो चूचा करने लगा भाई। कोई बात नहीं, मॉर्निंग बीट में हमारी बीट जारी है। वेलकम टू मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ आपके अपने रेडियो मस्ती पर।
1: रेडियो मस्ती।
2: Quand les petits bébés, Moticon Prothèse Li compte tout kitsuse. Mais Astella donne les mondes digitales, mots pas toujours connus au qui s'en l'a lipé causé, ou soit qui l'y pégué.

0: चलो भाई, जब तक आंख मारे ये ठीक है, पता चला कुछ और पकड़ के मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: वैसे मम्मी से मजाक करो, मम्मी को अच्छा नहीं लगता ना, तो मम्मी कर्चे को बस ऐसे मार देती हैं, बर्तन हो तो वो भी चला देती हैं, नहीं कांच की नहीं चलाती, बस ऐसे गुस्से में नहीं, प्यार से। वो मम्मी का प्यार होता है, मम्मी कभी अपने बच्चों से रूठ नहीं सकती। कभी कभी होता है कि मम्मी थोड़ा नाराज हो जाती है, लेकिन मनाने पर मान जाती है। चलो मम्मी से पंगे मत लो, ये वही है जो सुबह सुबह आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपके कपड़े प्रेस करती हैं और ख्याल रखती हैं कि आप घर पर कुछ भूले ना, है ना। जाने से पहले मम्मी को किसी करके मम्मी को थैंक यू बोलते हो, नहीं बोलते हो ना, अभी बोलना शुरू कर दो। चलो ऐसा करने से क्या होता है ना, स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि सारा स्ट्रेस तो मम्मी ले लेती है। अब भाई ये स्ट्रेस की बात चल रही है तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना, एक टाइम पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, नींद अच्छी आती है, सोते हो ठीक से ना, ये नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।

0: और जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, तो उनको मैं हमेशा कहती हूँ, फिर भी कह रही हूँ कि एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा कम से कम आप वॉकिंग या जॉगिंग या तो फिर योगा करो, ज़्यादा नहीं तो कहीं कोने में बैठ के डीप ब्रीदिंग करो, अपने मन को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करो, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। ट्रस्ट मी, होता है, फ़ायदा होता है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी है काम में तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करो, फैमिली आपके जो क्लोज आपके जो दिल के क्लोज हैं उनसे बात करो, थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। और जहाँ तक हो सके ना, ये मोबाइल और सोशल मीडिया से थोड़ा सा ब्रेक ले लो, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। म्यूज़िक सुनो, किताब पढ़ो, कोई भी हॉबी हो जो आपको पसंद हो, पॉजिटिव सोच रखो। हर प्रॉब्लम जो है ना टेम्पररी होती हैं, ये रोज़ के लिए नहीं होता, कहीं ना कहीं इसको ख़त्म होना ही होता है। और अगर आपको कहीं और चैन ना मिले तो फिर हम हैं ना रेडियो मस्ती, आपका मॉर्निंग बीट।
1: A good beat for your morning show. Come on. Morning beat. RM2.
2: Radio Musti. Musti.
0: Radio Musti suno, you will feel good.

0: मॉर्निंग बीट
1: ओ गॉड वन मोर रिमिक्स
0: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स

0: A good beat for your morning show. Come on. RM2
1: Radio Musti.
2: 8:55 हमारे जाने का टाइम हो गया है और विकास के आने का टाइम हो
3: गया
2: है.
3: कोई जाएगा तो कोई आएगा.
2: Exactly.
3: Good morning.
2: How are you doing?
3: मैं ठीक ठाक हूँ और लेकिन सुबह सुबह सुना कि ठंड उतनी नहीं पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा disappointed
2: हूँ. हमें ठंड लग रही है स्टूडियो में बहुत ज्यादा.
3: हाँ ये तो
2: ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड में बैठे हैं.
3: है ना.
2: हाँ.
3: बिना खिड़की खोल के.
2: Exactly.
3: अच्छी बात है. Alright, ladies and gentlemen, थोड़ी देर में आने वाला हूँ. वैसे ट्रैफिक की समस्या तो भरपूर है.
2: हाँ फिनिक्स में देख रहे हैं थोड़ा सा स्लो ड्राइविंग है. अगर कोदा नौसा साउथ की ओर देखे तो यहाँ पर भी गाड़ियाँ चल रही है, धीरे धीरे चल रही है. लेकिन गजवी की ओर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है की थोड़ा यू नो राउंड अबाउट पे गाड़ियाँ.
3: ट्रेनों से जब आ रहे हैं तो आपको पता है की थोड़ा सा रोड वर्क चल रहे हैं तो उसके चलते भी थोड़ा सा कंजेशन का.
2: कैटरपोल और रोजबेल में भी थोड़ा धीरे धीरे रोक चल रहे हैं. लेकिन यही पीक टाइम होता है, यही समय होता है जब थोड़ी ट्रैफिक बढ़ जाती है. लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, फ्री फ्लो है म्यूजिक का. मैं चलती हूँ, विकास देंगे आपका साथ. मिलती हूँ मैं अब आपसे कल मॉर्निंग में 7 बजे. ख्याल रखिएगा. बाय.
1: RM2 Radio Musti.
0: Hit music only.
4: Radio Musti feels a musti.

0: 13 मई और बुधवार का दिन, आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ। समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है अदिति। नमस्ते अदिति।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का स्वागत। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं चली। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिसमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेशल्स के राष्ट्रपति और मॉरिशन प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने संभाली। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में मध्य पूर्व में तनाव की समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकी महाद्वीप अपने महासागरों की स्थिरता पर निर्भर हैं और ऐसी स्थिरता जो कि उनके अनुसार वर्तमान में इस संघर्ष से हिल रही है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस द्वारा स्थापित किए जाने वाले सागर द्वीप समूह के समुद्री संरक्षित क्षेत्र और सेशेल्स के साथ मस्कारेंस के एक हिस्से के संयुक्त प्रबंधन का भी उल्लेख किया। दोनों देश मिलकर जैव विविधता और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का सह प्रबंधन करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों और अनुचित कार्य शर्तों को लेकर चिंता जता रहा है। पोटली में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की, खासकर हाल में सामी की एक टीम पर हुए हमले को लेकर। अध्यक्ष अमरजीत सितोहल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संघ ने लंबे समय से इस क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी, वेतन के भुगतान में देरी और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में योजना के अभाव का भी उल्लेख किया। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे कभी बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर गए थे और अपने पीछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरा इतिहास छोड़ गए थे। आज भी शर्तबंद मजदूरी की विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन को प्रोत्साहित करती है। आज से 15 मई तक अप्रवासी घाट प्लस वन मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण होगा, जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका और ईरान के बीच कायम कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल की तरफ से लबनान पर हमले जारी हैं। दक्षिणी प्रांत में एक इसराइली रॉकेट हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 पैरामेडिक्स शामिल बताए जाते हैं, जबकि इसराइली सेना ने इस हमले को अंजाम देने की पुष्टि नहीं की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आगे आ दीजिए, नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to RM2.
3: Musty Mornings, Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Hey, good morning. Namaskar aap sabhi ko aur swagat hai aap sabhi ka super energetic Wednesday ki morning mein. जहाँ 9 बज चुके हैं, रोड्स पर ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ने लगा है और बसेस हो गाड़ी हो अपनी फिल्मी रेस में निकल चुकी हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और ऊपर से वेदर ये सुबह सुबह इतना ठंडा ठंडा कूल लेकिन म्यूजिक टेंशन के बीच में जहां पर आप जाए सारी फिकर भूल. हे गुड मॉर्निंग, ऑफिस जाने वाले आपके लिए स्पेशल पैगाम. स्टूडेंट्स ऑल्सो ऑन द मूव, और कुछ लोग हैं जो स्नूज बटन के साथ अभी भी इमोशनल अत्याचार खेल रहे हैं. आपका साथ निभाने वाला हूँ टिल 12 PM, जहाँ पर आपकी राशियाँ होंगी, साथ में कुछ मस्ती होगी, साथ में धमाकेदार गाने, गॉसिप, पॉजिटिव वाइब्स, ये सब लेकर बिल्कुल सेट. तो बस चाय हो या कॉफी, स्टेयरिंग हो या फिर ऑफिस का डेस्क, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और मूड को फुल ऑन सेट कर लीजिए, क्योंकि आज का वेंसडे होने वाला है बहुत ही एंटरटेनिंग, म्यूजिकल और फुल ऑन एक ब्लॉकबस्टर.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

टेंशन और फिगर। बस देखो मदर उधर उधर अपने काम में लग जाओ, फिर देखो ये सब हो जाएंगे उड़न छू। द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक जस्ट फॉर यू।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: चलिए साहब नजर डाल लेते हैं सितारों की चाल पर, शुरुआत करते हैं वो है
2: एरीज मेष राशि।
1: आज किस्मत आपके दरवाजे पर नए अवसरों की नॉक नॉक कर सकती है, यानी कि दस्तक दे सकती है। पैसों से जुड़े कुछ फैसले समझदारी से लेने होंगे और उसके बाद लाभ की राह खुल सकती है। काम में आपका जोश लोगों को प्रभावित करेगा और प्रेम जीवन में रोमांस की मिठास दिल को खुश कर देगी।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: मेरे ऐसा है कि अपनी जो योजना है उनको आप सफल बनाना चाहते हैं, उसको अपनी सीढ़ी बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं, जिससे आत्मविश्वास भी ऊंचा रहने वाला है। परिवार में शादी या शुभ समाचार का माहौल खुशियां ला सकता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: मिथुन राशि आज खुद को बेहतर बनाने के मूड में रहेंगे और यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी। घर में खुशखबरी का माहौल बन सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह लोगों को प्रभावित करेगी और वरिष्ठ भी आपकी तारीफ करेंगे। पिताजी की बात आज आपके लिए एक सीख के रूप में साबित हो सकती है।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। नया वाहन हो या घर से जुड़ी कोई खास खरीदारी मन को खुश कर सकती है। किसी मित्र की मदद करके आपको काफी संतोष मिलेगा। पुराने पैसे या लेन देन के मामले में दोबारा आपको काफी समझदारी लगानी पड़ेगी, इसको सुलझाना सही वक्त पर बेहतर होगा।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको कर दियो। मेहनत तो आप करेंगे, वहीं पर आपको सुनहरा फल भी मिल सकता है। व्यापार और निवेश दोनों में लाभ अच्छे संकेत दे रहा है। ओ जी, वेरी नाइस। प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा। वहीं पर सिंगल लोग वही किसी खास इंसान के साथ मुलाकात हो सकती है।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आपकी लगन और मेहनत आपको भीड़ से अलग पहचान दिला सकती है। नौकरी में तारीफ मिलेगी और विद्यार्थी स्टूडेंट जो पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन है करते चले जा रहे हैं, और आपको थोड़ा फोकस करना होगा, आगे बढ़ना होगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी।
2: लीब्रा तुला राशि।
1: आज समझदारी से लिया गया हर फैसला आपके भविष्य को मजबूत बना सकता है। व्यवसाय में नई योजनाएं फायदा देने लगेंगी। जीवन साथी के साथ बिताया गया समय रिश्ते में नई ताजगी लेकर आ सकता है। हाँ, ये गुस्सा जो है उसको दूर कीजिए और ये सोच लीजिए कि मेहनत, कोशिश, समझदारी, यही तो सफलता की चाबी है।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: पैसों और सेहत दोनों मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। पुराने जो विवाद है, कॉन्ट्रोवर्सीज है, उनको खत्म कीजिए, हल्का महसूस करेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात यादों को ताजा कर सकती है। परिवार का जो माहौल है धीरे धीरे बेहतर हो रहा है।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज सफलता आपके कदम चूम सकती है। जिस काम में हाथ डालेंगे अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। सम्मान हो या पुरस्कार मिलने से मन गर्व महसूस करेगा। व्यापार की उलझनें सुलझेंगी और संपत्ति

0: खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: हर कदम सोच समझ कर लीजिए, मन में चल रही उलझनों को शांत दिमाग से सुलझाएं। ऐसा नहीं कि अफरा तफरी के अंदर नए काम की योजना भविष्य में बड़ा फायदा दे सकती है। विवादों से दूरी बना के रखें, ये आपके लिए समझदारी का काम है। किसी मनोरंजन या यात्रा से मन हल्का होगा, खुशी महसूस होगी।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: छोटी छोटी चुनौतियां जो हैं आपके धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके खिलाफ कोई माहौल बना सकता है। खर्च बढ़ रहे हैं तो बजट के बारे में थोड़ा सोचना जरूरी है। पुरानी गलती से मिली सीख आपको मजबूत बनाएगी।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: यस लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पाइसेस आज आपकी जो पॉजिटिव सोच है, ऊर्जा है, हर काम में चमक बिखेर सकती है। रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यवसाय में लंबी योजनाएं अब गति पकड़ सकती हैं। परिवार में सरप्राइज और खुशियों का माहौल रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा।
2: Your daily horoscope, RM2, Radio Masti.

0: थोड़ी देर में कुछ बॉलीवुड की बातें और साथ साथ में चलेंगे आपके मैसेजेस की तरफ।
1: RM2 रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए बात करते हैं कुछ किचन से रिलेटेड या फिर अपने घर से रिलेटेड या फिर सीधा टॉयलेट में। लेकिन आपको बताता हूँ क्यों मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ हैक्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। वैसे टॉयलेट में कहते हैं हफ्ते में एक बार ही तो बर्फ के टुकड़े डालने चाहिए। क्या मैंने भी ऐसी रिएक्ट किया, लेकिन सुनिए तो भैया आप बात से परेशान है कि टॉयलेट क्लीनर डालते ही सीधा वो अंदर चला जाता है, सीधा गटर में नाली में बह जाता है और जिद्दी जो दाग होते हैं वो अपना असर उन पर नहीं दिखा पाता। अगर ऐसा है तो किचन के फ्रीजर में इस समस्या का एक आसान सा समाधान छुपा है। भाई सोशल मीडिया पर आजकल बात हो रही है आइस क्यूब हैक की, ये काफ़ी चर्चा में है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो बेहद आसान और प्रभावी है। भाई बर्फ़ के टुकड़े क्लीनर को बिल्कुल सरफेस पर रखते हैं और फ्लश के दौरान एक ब्रश की तरह हल्की रगड़ पैदा करते हैं, जिससे बिना मेहनत टॉयलेट चमक उठता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही आसान है। वैसे तो आप करना क्या है, पहले तो फ्रीजर से लगभग 2 कप बर्फ़ के टुकड़े निकालें और सीधे टॉयलेट बाउल में डाल दें। इसके बाद टॉयलेट क्लीनर या फिर वाइट विनेगर बर्फ़ के ऊपर डाल सकते हैं। बर्फ़ जो है क्लीनर को रोक कर रखेगी, जिससे दीवारों पर ठीक से चिपक जाएगा। इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि क्लीनर अपना काम कर सके और एंड में बस आपको फ्लश चलाना है। बहुत ही आसानी सी बात हो जाती है ना। वैसे टॉयलेट साफ़ करते हुए बड़ी समस्या होती है कि जो लिक्विड क्लीनर डालते हैं वो फिसल कर नीचे चला जाता है, लेकिन ऐसा करने से बर्फ़ डालने से वो वहीं पर टिक जाएगा और क्लीनिंग अच्छी हो जाएगी। और जब ये स्क्रब करेंगे ना, ये जो आइस के पीसेस हैं, उससे भी काफ़ी कमाल होगा। टॉयलेट में अक्सर नमी ह्यूमिडिटी के चलते एक खास तरह की गंध आने लगती है। बर्फ़ का जो नुस्खा है वो बदबू दूर करने में भी सहायक होता है। जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है तो ठंडे पानी के साथ फ्लश हो जाती है और सतह ज़्यादा बेहतर से धो पाती है। तो बस अगली बारी जब बर्फ़ के टुकड़े को देखेंगे तो कहो कि जितने जिद्दी दाग हैं तुमको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
1: The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty feels a musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: वैसे बहुत सारी प्लानिंग चल रही है मदर्स डे के लिए, लेकिन साथ साथ में अगर हम सर्वे के बारे में सोचें या फिर और ऑल द वर्ल्ड, काफ़ी जो माएँ हैं वो ये फील करती हैं कि जो लड़कियां हैं उनको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को हमेशा खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों ज़रूरी है? भाई आपको बताएं कि यहाँ पर कुछ बातें शेयर की गई। वैसे कहते हैं कि अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। भाई खुद पैसे कमाना उनके लिए सबसे बड़ी बात है। जब उनके पास अपनी कमाई होती है तो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं होती, डिपेंड नहीं करती। अपनी पहचान मिलती है, अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन अपनी पहचान बनानी जिसके लिए आप बने हो या फिर कैपेबल हो, क्यों उसको एक्सप्लोर ना करें? मुश्किल समय में सहारा मिलता है। अगर कोई ऐसा समय आ जाए जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत है तो खुद की कमाई पर आप डिपेंड कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पढ़ाई करना हो, घूमना फिरना हो,

0: घर लेना हो, जो भी करना हो, अगर आप कमाते हैं तो फिर इन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्यों नहीं। और ये भी होता है कि परिवार की जो जिम्मेदारी आपने ले रखी है उसमें भी एक अहम हिस्सा निभा सकती हैं। अगर कमाती हैं तो फिर माता पिता या पति का सहारा भी बन सकती हैं, मिलकर कोई जॉइंट प्लानिंग कर सकते हैं आगे बढ़ने की, और अगर कहीं गलत रिश्तों में फंसे हैं तो उससे बाहर निकलने की ताकत भी आपको मिलती है। कामकाजी लड़की के पास ये ताकत होती है कि गलत चीज़ों के खिलाफ खड़ी हो सके, जो फैसले आप लेते हैं इंडिपेंडेंटली ले पाते हैं। ज़रूरी है, माँ बाप की जिम्मेदारी आप उठा सकती हैं, तो कभी मौका मिले ऐसा करने का तो सोचिए क्या क्या आप कर सकती हैं, कैसे आगे बढ़ सकती हैं। बस कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन साथ में दे सकेंगे एक हेल्पिंग हैंड अपने आप को भी और दूसरों को भी।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: West
1: 96.4
0: Center
1: 99.4
2: RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musti,
2: feel the musti.
3: Okay, good morning, time check 10 a.m. स्टूडियो मार्गदर्शियों से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
4: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं चली। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिसमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेनेगल के राष्ट्रपति और मॉरिशन प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम ने संभाली। डॉ नवीन रामगुलाम ने अपने उद्घाटन भाषण में मध्य पूर्व में तनाव की समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीकी महाद्वीप अपने महासागरों की स्थिरता पर निर्भर हैं, और ऐसी स्थिरता जो उनके अनुसार वर्तमान में इस संघर्ष से हिल रही है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस द्वारा स्थापित किए जाने वाले शागोस द्वीप समूह के समुद्री संरक्षित क्षेत्र और सेशल्स के साथ मास्कारेंस के एक हिस्से के संयुक्त प्रबंधन का भी उल्लेख किया। दोनों देश मिलकर जैव विविधता और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के लिए 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन करेंगे। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे कभी बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर गए थे और अपने पीछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरा इतिहास छोड़ गए थे। आज भी शर्तबंद मजदूरी की विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन को प्रोत्साहित करती है। आज से 15 मई तक आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है, जिसमें कई देशों के शोधकर्ता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिनों के सम्मेलन के अंतर्गत मॉरिशस शर्तबंद मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में उसकी भूमिका पर विचारों के आदान प्रदान और चिंतन का केंद्र बनेगा। जहां पुलिस कर्मियों के हित का मुद्दा सार्वजनिक बहस का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, वहीं सरकार की तरफ से कल खुलासा किया गया कि 63 पुलिस क्वार्टर्स फिलहाल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी मरम्मत संभव नहीं है। देश भर में पाए जाने वाले 608 पुलिस क्वार्टर्स में से 545 में लोग रह रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर दफ्तर की तरफ से प्राप्त जानकारियों के अनुसार फिलहाल इनके नवीनीकरण या नए आवास के निर्माण की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आश्वासन दिया है कि MV होंडियस क्रूज जहाज से यात्रियों को निकाले जाने के बाद हंता वायरस का कोई वृहद फैलाव दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन WHO के प्रमुख का कहना है कि किसी भी समय हालात बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहना अनिवार्य है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Welcome to Radio Musti.
5: Check this out.
2: The latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musti. Feel the Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: लीजिए सेफली लैंडिंग इनटू द सेकंड आवर 10:08 13th of May. हेलो गुड मॉर्निंग, ये है योर मस्त मॉर्निंग जिस घंटे में भी आपके मैसेजेस हो या फिर हाउसहोल्ड या फिर डेको टिप्स और कुछ और मस्ती लाइक द वाइब दिल की बात है

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: इस फैशन का फंडा लेकिन साहब क्या करें कि जब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है यानी स्लोली समर से विंटर की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है तो वार्डरोब को भी चाहिए एक फिल्मी मेकओवर। देखिए दोस्तों अभी ना फुल स्वेटर का टाइम है ना ही टोटल बीच शॉर्ट्स का भी। ये मौसम बिल्कुल बॉलीवुड के लव ट्राइंगल जैसा कन्फ्यूज चल रहा है अगर सोचे तो। नहीं बॉयज़ के लिए फैशन, अरे कभी खुशी कभी गम में जो स्टाइल था ना यानी कि कैजुअल लुक, सॉलिड टी शर्ट, ऊपर से एक लाइट डेनिम जैकेट और स्नीकर्स, ये काफ़ी फैशनेबल होगा। ना ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना ठंड वाला एटीट्यूड आपको फ्रीज कर देगा। एंड लेडीज़, अगर आपको एलिगेंट और कॉम्फी दोनों लगना है तो ये जवानी है दीवानी में जैसे दीपिका पादुकोण के क्यूट स्कार्फ और पास्टल कार्डिगन वाइब्स को कॉपी कर सकते हैं। सिंपल है, स्टाइलिश है और सोशल मीडिया के लिए भी बिल्कुल रेडी। और हाँ, मौसम चाहे ठंडा ठंडा कूल कूल हो, सनग्लासेस का स्वैग कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता बिल्कुल। तो बस आप उनको पकड़ें, अपने स्टाइल को ऐड कीजिए और उसके बाद देखिए ऑफिस हो या कॉलेज, दोनों में आपको लगेगा जैसे यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलिए कीप इट फैशनेबल, कीप इट म्यूजिकल।
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकोरे फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। RM2
1: Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: ये लाला लाला बहुत बारी आता नहीं, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: भाई क्या करें कि कभी कभी थोड़ा फिल्मी होना जरूरी हो जाता है, यानी कि अगर बात करें खाली बॉलीवुड की तो खाली ऐसे मजा नहीं आता है। मजा आता है जब फुल साल के अंदर वैसा होता है 2 to 4 के बीच में आपको भरपूर बॉलीवुड की न्यूज मिलती है, द लेटेस्ट सॉन्ग। सो डोंट फॉरगेट 2 to 4 के बीच में आपको मिलता है बॉम्बे टॉकीज का एक डोज। अभी के लिए चलते हैं, हम बात करते हैं कुछ और बातों की। आपके मैसेजेस है, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग जी, आशा जी हमारे साथ दे रही हैं, कहते हैं मौसम जहाँ पर सुबह है वहीं पर गाने भी काफ़ी कमाल कर रहे हैं। ममा कुमारी है, शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, जीजू राज एंड जानू फैमिली के लिए हेलो। वहीं पर आ गए सांगर जो कि हमारे साथ दे रहे हैं फ्रांस से, कैसे चल रहा है वहाँ पर? मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, ये कि यहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती, खाली फ्रिज में गिरती है। गुड मॉर्निंग जी, और नाइस कॉफ़ी की फ़ोटो भेजकर यालेश हमारे साथ दे रहे हैं सुख नाम से, हेलो गुड मॉर्निंग। वैसे जो कॉफ़ी की सुगंध है ना सुबह सुबह, ओपन्स योर माइंड, और जैसे म्यूज़िक आपकी नसों में घुस जाता है, आपकी दिल तक पहुंच जाता है, फिर लगता है कि दिल धक धक नहीं, एक बीट पर बीट कर रहा है। नहीं, ऑलराइट, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है देन यू आर अ ट्रू म्यूजिक लवर। वहीं पर यहाँ पर शालिनी जो हमारे साथ देती है मॉर्निंग मॉर्निंग में, थैंक यू सो मच। बच्चों को तैयार करके भेजकर अभी फिलहाल टाइम रहा है कुछ पकाने का, कुछ सुनाने का, गुनगुनाने का, वेरी गुड। और वहीं पर आरती हैं, वो भी हमारे साथ दे रही हैं गुड मॉर्निंग, कहते हैं अपनी सासू माँ के साथ किचन में हैं और म्यूज़िक की वॉल्यूम फुल ऑन ऐसी होना चाहिए। अरे साहब, आपका शरीर जैसे मकान, उसकी खिड़कियाँ हैं कान।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: And this one goes on special to Renuka ji jo hamare saath din aur kehte hain jab mithun rashi ki baat aati hai aur aap karte hain hey kya re mithun bolti re ha wo thoda coconut pani pi ke you know coco loco ha kuch aisa hi
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: हाँ लेकिन बात करें हमारे पुराने जो सितारे थे वो लार्जर देन लाइफ थे. उनका जो स्टाइल था, उनकी एक्टिंग, उनका हर कुछ अलग. आजकल के जो स्टार्स हैं, नहीं ठीक है कहानी चल रही है, लेकिन वो जो इंडिविजुअलिटी है ना, यूनिकनेस, चाहे अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ हो, उनका डांसिंग स्टाइल हो, या फिर हम बात कर रहे थे देवानंद साहब की, ओह मतलब हर कोई अलग. शम्मी कपूर साहब, ओह क्या बात है. और ऐसे मिथुन दा, उनका भी स्टाइल कुछ अलग. और दो तीन पिक्चरों में वैसे जैसे धर्म जी आए शोले के अंदर, बसंती ये जो दुनिया है बड़ी कमाल की है बसंती, वो जो स्टाइल उन्होंने पकड़ा उस टाइम पर, वो इतना एक वायरल हो गया कि हमेशा उनको जब याद किया जाता है तो शोले तो बात होती होती है. चलिए अभी चलते हैं वापस और चलते हैं अब किचन की तरफ. और बात करें अगर हम तांबे की, कॉपर की, तो कभी कभी होता है कि रसोइयों का जो हिस्सा है वो रहते हैं, फिर चाहे ग्लास में पानी पीना हो या तांबे के बर्तन में खाना पकाना. वैसे कहते हैं कि काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन उसको साफ करना ये एक चुनौती, एक चैलेंज होता है. चलिए इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में कि उनको कैसे चमकाएं, फिर से काम में कैसे लाएं.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाँ, तो बात करते हैं कि तांबे के बर्तन यानी कॉपर के जो बर्तन हैं वो जल्दी गंदे हो जाते हैं और उन्हें साफ़ करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कैसे साफ़ करें और काफ़ी रगड़ना पड़ता है, लेकिन एक टेक्निक है, चलिए इसकी बात करते हैं। हाँ, बस आपको चार चीज़ें चाहिए होंगी, उसकी मदद से आप उनको साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। चाहिए क्या होंगे? आपको चाहिए गेहूँ का आटा, व्हीट फ्लावर, साथ में हल्दी, नींबू और नमक। फिर सुनिए, गेहूं का आटा, हल्दी, नींबू और नमक। बस एक छोटी सी कटोरी में दो तीन चम्मच गेहूं का आटा डाल लें, अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें, अब थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और बर्तन के अंदर और बाहर इस पेस्ट को अच्छे से लगाएं। पेस्ट को 5 से 10 मिनट के लिए लगा रहने दें ताकि गंदगी को ढीला कर दे। अब हल्के हाथों से बर्तन पर रगड़ें, अगर बर्तन पर ज़्यादा दाग या कालापन है तो थोड़ा नमक छिड़क कर फिर से रगड़ें। गोल घुमाव करते हुए यानी कि सर्कुलर मोशन में आप करें कि खरोंच ना आ जाए, और बस फिर गुनगुने पानी यानी कि वार्म पानी के अंदर, उसको साबुन की ज़रूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो पेस्ट तो गंदगी और ऑक्साइड को हटा ही देगा। तो बस आसानी से आपके जो बर्तन हैं साफ़ हो जाएंगे। बस बर्तन को साफ़ कपड़े या किचन टॉवल से पोंछ लें, अगर चाहे तो आखिरी बार थोड़ा नींबू का रस और नमक मिलाकर पोंछ सकते हैं ताकि बर्तन और चमकदार दिखें। वैसे तांबे के बर्तनों को इस्तेमाल के बाद तुरंत धोकर सुखा लें और महीनों में एक बार नींबू और नमक से हल्का पॉलिश कर दें, इससे बर्तन हमेशा नए जैसे चमकेंगे और ये स्माइल है जो आपकी वो तो ज्यादा चमकेगी कुछ इस तरह।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: चिंगाम लेके जाएगा सीधा हमें 11 बजे के समाचारों की, और उसके बाद फिर से मुलाकात होती है 11 टू 12, एक घंटा बाकी, बाकी अपनी मुलाकात। ये लड़की भी खुश हो गई। महका महका भैका भैका

0: 13th of May, Wednesday का दिन, थोड़ी देर में चलेंगे समाचारों की ओर।
1: Radio Musti Hit Music Only Feels a Musti

0: समाचारों में आपका स्वागत। अदिति आगे स्टूडियो में, नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं चली। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिनमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेनेगल के राष्ट्रपति और मॉरिशन प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने संभाली। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ नवीन राम गुलाम ने मध्य पूर्व में तनाव के समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप के बीच सहयोग और घनिष्ठ किए जाने की मांग की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन नौकरी स्थल पर हिंसा, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी चर्चाओं समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंता जता रहा है। पोर्ट लुइस में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की, खासकर हाल में सामू की एक टीम पर हुए हमले को लेकर। संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितोहल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही संघ ने लंबे समय से इस क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी, वेतन के भुगतान में देरी और रिक्रूटमेंट प्रक्रिया में योजना के अभाव का भी उल्लेख किया है। संघ के अध्यक्ष ने आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को डिजिटाइज करने और नौजवानों को इस पेशे के प्रति आकर्षित करने के वास्ते वेतन प्रणाली में सुधार लाए जाने पर बल दिया। आज से 15 मई तक प्रवासी घास ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंचर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है। 3 दिनों के अंतर्गत इस सम्मेलन में मॉरिशस शर्तबंद मजदूरी की विरासत और समकालीन दुनिया में उसकी भूमिका पर विचारों के आदान प्रदान और चिंतन का एक केंद्र बना रहेगा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, फ्लोरिडा में जंगलों में लगी आग भीषण तरीके से फैल रही है, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। और अभी तक दूसरे दिन के लिए 7,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन पर जंगल जलकर राख हो गया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 6 अडोल्फ रोलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में, नंबर 6 अडोल्फ रोलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राधा सूर्या पैदाशी नाम गणेश, जो मंती पोवेसियो योगा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री विवेक जय सूर्या के मकान नंबर 6 अडोल्फ रोलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोलंबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पर्स डिफ्लैक में, 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री नवींद्र सोनाराम जो विनोद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12:15 इनके मकान रॉयल रोड पर्स डिफ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीमोंग पर्स डिफ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:15। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hit music only.
3: Feels a musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आरएम टू रेडियो मस्ती पर। बी टाउन की खबरों के साथ साथ कुछ मस्ती जरूर जारी है और वही पर हम चाहते हैं कि मॉर्निंग में वो तो बने बने लेकिन साथ साथ में
0: आरएम टू
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।
2: देखिए सोचते कि सुबह की भाग दौड़ी, बच्चों को तैयार करना, खाने पीने की प्लानिंग करना, उसके बाद थोड़ा सा वक्त मिलता है जब घर पर किचन में कुछ खाने पीने के साथ साथ कुछ डायलॉग बाजी, कुछ बी टाउन की खबरें, कुछ तड़का, भाई खुश हो गया लड़के। इसलिए वापस बैक विद म्यूजिक। तो चले अपने मैसेजेस हों या बी टाउन की खबरें, सब कुछ है यहीं पर। जाना है कहाँ, ये है संगीत का जहाँ।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी वक्त हो गया कि हम चलें और जाकर अपने लोगों से मिलें। आपको याद दिला दें कि हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो स्टूडियो में भी आते हैं, एंड इट्स ऑलवेज नाइस कि हम जाने यहाँ से पहुंचे स्टूडियो से बाहर, उनसे मिले जो हमें सुनते हैं। और अभी गाए तो हिनाल से आ गई एक टीम, चलिए उनसे मिलते हैं, देखते हैं कौन किसे क्या कह रहा है, कौन से गाने की फरमाइश। लेट्स फिगर इट आउट।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.

0: Right, ladies and gentlemen, okay, आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट वो तो ना वो डर होता है रेडियो पे क्या बोलेंगे, क्या होगा, सो ये कुछ हो रहा है. एटलीस्ट यू कैन से अ बिग हेलो. हेलो गाइस. हाँ, थोड़ी सी आवाज आई हेलो के बाद, थोड़ा सा हेलो. एंड यू कुड कम एंड टेल मी कि बी टाउन में अगर कोई गाना आपको पसंद है तो यू कुड टेल मी, क्यों नहीं. लेकिन सब शर्मा रही है, कोई नहीं आ रहा. लेकिन किसने कहा, दिशनी थी, आई थिंक दिशनी थी, जिसने कहा कि आई एम फ्रॉम गायतों हिनाल और मुझे गाना सुनना है फ्रॉम धुरंधर. कितना बॉलीवुड है इसके अंदर. हाँ, लेकिन कोई बात करे तो और मजा आएगा. यस, कोई अगर बात करना चाहता है तो यू कुड बी इन फ्रंट ऑफ द माइक, क्यों नहीं. नहीं, सब डरे हुए हैं. चलिए कोई बात नहीं, हम इनके गाने को जरूर चलाते हैं. एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर द विजिट. अगर आपको लगता है कि कल आप भी यहाँ पर आकर एक प्रेजेंटर बन सकते हैं तो क्यों नहीं. यू कुड बी द नेक्स्ट आरजे, बट यू कुड टेक द एक्सपीरियंस अलॉन्ग. And let's sing along with the song, all happening right here.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: मूवी ने एक अलग ही बेंचमार्क साबित कर दिया। वी गोना टॉक अबाउट बी टाउन, लेकिन साथ साथ में थोड़ी देर में बात करेंगे ऐसे रोबोट के बारे में जो आपने खाली मूवीज में देखा होगा। अब क्या है बता दूं थोड़ी देर में।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Right, destination China, यानी कि मॉरिशस. चलते हैं सीधा चाइना और चलते हैं देखते हैं वहां पर क्या हो रहा है. रोबोटिक्स, माय गॉड, टेक्नोलॉजी. इसकी बात करें तो सालों से हम देख रहे हैं कि जो हॉलीवुड की फिक्शन

0: मूवीज होती हैं उसमें बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं निकल पड़ते हैं रोड पर एंड डिशुम डिशुम पता नहीं कहाँ कहाँ से मिसाइल विसाइल निकलती है। तो कहता हूँ कि यहाँ पर भी चल गई एंटरटेनमेंट की गोली। अब एंटरटेनमेंट तो होगी पर चाहे फास्ट या स्लोली स्लोली। भाई आपको बताएं कि ये जो रोबोट्स हैं ये अब हकीकत बनने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक रोबोट बनाया गया जो लगभग 2 मीटर से ऊंचा है और इसमें एक इंसान बैठ सकता है। जो कंपनी है उसका सीईओ बैठ गया और वो फटाफट उसको चलाने लगा, मतलब कमाल। भारतीय रुपये में बात करें तो 6 करोड़ का ये रोबोट है। अब कौन रोबोट में बैठ कर चलेगा या खुद अपनी टांगों पर चल ले, आसान होगा नहीं। हाँ लेकिन ये बात है कि वो गाड़ी के कुछ फीचर्स हैं उस तरह भी चल सकता है या फिर 2 पैर की जगह अपने 4 लिम्स का इस्तेमाल कर भी चल सकता है। अब आने वाले टाइम में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी जगह पर जहाँ पर टेरेन बहुत ख़राब है और वहाँ पर इंसान के लिए जाना काफ़ी मुश्किल है, तो वहाँ पर ये रोबोट काम में आएगा। लेकिन अभी प्रोडक्शन शुरू हो गई, खाली चाइना में नहीं बाहर के देशों में भी। और सुनने में आ रहा है कि अब इसका जो प्राइस पॉइंट है हाँ काफ़ी महंगा है, तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में हो सकता है मटेरियल हो या फिर उसकी फीचर्स हो कुछ कम करके ये आम इंसान तक पहुंचा जाएगा। अब इंसान तो लगता है कि अब अपनी टांगों पर तो नहीं जाएगा।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसे आप जहाँ पर कुछ हाउस होल्ड डेको टिप्स और उनके साथ मैं जुड़ा आपके साथ वहीं पर टेक्नोलॉजी है, उसकी बात के लिए रोबोट, भाई इंसान भी तो रोबोट बन जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि दो ही हाथ हैं, दो ही पैर हैं, लेकिन हो सकता है कि दो हाथ दो पैर के साथ आप दो हाथ दो पैर वाले रोबोट को चला रहे हो तो गिनो कितने हो गए। हाँ, गिनने की बात तो है ही। वैसे आपको ये बता दूँ कि काम फटाफट होना चाहिए। अब आने वाले टाइम में रोबोट्स आपकी ज़िंदगी को कितना आसान बनाएंगे ये तो बात अलग है, लेकिन जो फीलिंग्स है ना दिल की वो समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर चले कुछ मैसेजेस। हे गुड गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग अभी चल रही है, बस खाने पीने का टाइम यहाँ पर हो गया है। कहते नमस्ते जी, मैं हूँ शीला। राइट शीला, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। कहते खाने का टाइम एक्चुअली हो गया है और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर फैक्ट्री के। ओह राइट, ये जो खाने के पीने का टाइम होता है ना, ये बहुत ही स्पेशल होता है और इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। सभी फ्रेंड्स को हेलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको भी अनूप साहब हैं और कहते हैं काहुलीन से हैं, बेले से हैं, RM2 के सभी फैंस को नमस्ते नमस्ते जी। कहते बस आज एक व्रत हम मना रहे हैं, आप सभी को बहुत सारा प्यार। और थर्सडे को भी व्रत हम बनाएंगे, लेकिन कल ही 6:30-9:30 के बीच में हम तोड़ेंगे फ्रूट्स, पोटैटो, कैरेट, बीट रूट, खाना जो भी होता ना सॉइल के नीचे, हाँ वही। तो बस आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही साथ देते रहो और फीडबैक देते रहो।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti
1: in the mix.
0: Radio Musti feels a musti
1: in the mix.
2: जाने वक्त और थोड़ी देर में साथ देने के लिए रेट्रो रिदम में आप जुड़ रहे हैं ना, तो बस आपको बताया कि वहाँ पर बी टाउन कुछ है ग्रीन गोल्डन एज 90s ऑल दिस होने वाला शामिल। चले हम भी

0: Radio Mesti in the mix. Radio Mesti feels a Mesti in the mix. RM2. Radio Mesti feels a Mesti.
1: RM2 Radio Mesti.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: North, South,
1: 103.5.
0: East, West,
1: 96.4.
0: Center,
1: 99.4.
4: RM2
1: Radio Musty.
4: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
0: Radio Musty.
4: Feel the Musty.
5: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं अदिति से संक्षिप्त समाचार। अदिति, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे कभी बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर गए थे और अपने पीछे निर्वासन, साहस और दृढ़ता से भरा इतिहास छोड़ गए थे। आज भी शर्तबंद मजदूरी की विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन को प्रोत्साहित करती है। आज

0: 15 मई तक अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंटर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है। 3 दिनों के अंतर्गत कई देशों के विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस सम्मेलन में भाग लेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन सरकारी नौकरी स्तर पर हिंसा कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंता जता रहा है। पोटली में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की। संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितौल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं हुई। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिसमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेनेगल के राष्ट्रपति और मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संभाली। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने मध्य पूर्व में तनाव के समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आश्वासन दिया कि एमवी होंडियस क्रूज जहाज से यात्रियों को निकाले जाने के बाद हंटा वायरस का कोई भी वृहद फैलाव दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन WHO के प्रमुख का कहना है कि किसी भी समय हालात बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की अनिवार्यता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 6 अडोल्फ ओलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 6 अडोल्फ ओलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड श्रीमती राधा सूर्या पैदाशी नाम गणेश, जो मानती प्रोफेसर योगा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री विवेक जय सूर्या के मकान नंबर 6 अडोल्फ ओलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना।
1: Débat climat peut continuer. Ben participant peut débattre aux questions climatiques qui concernent nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Creative Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir, le MBCN et MBCSAT.
2: Retro Rhythm.
3: RM2. Ready.

0: रेट्रो रिदम।
1: नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। RM2 पर मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये है आपका सबसे खास शो रेट्रो रिदम। मुकेश जी की आवाज़ हो, रफ़ी जी, लता जी, आशा जी, महेंद्र कपूर साहब या किशोरदा, वो सुनहरी आवाज़ें हैं और वो अमर नगमे उन्होंने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, आज फिर जिंदा होंगे सिर्फ आपके लिए। तो तैयार हो जाइए झूमने और गुनगुनाने के लिए रेट्रो रिदम में पूनम के साथ। ये है आपका फेवरेट प्रोग्राम रेट्रो रिदम।
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:21 हो चुके हैं दोस्तों, ये है दोपहर यादगार होने वाली, क्योंकि यहाँ वो गाने चलते हैं जो नानी गुनगुनाती थी, दादी झूमती थी, और वो धुने जो दिल में बस गई हैं। आज सब हाजिर हैं आपके इस महफिल में, मैं हूँ आपके साथ पूनम, सिर्फ संगीत के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप भेज सकते हैं 5499124 पर। चलिए साथ साथ एक दो मैसेजेस भी ले लेते हैं। बाम्बू से जुड़े हुए हैं धनवेश्वर जी और माला जी, और वो अपनी एक फरमाइश कर रहे हैं। बिल्कुल गाना अगला आपके नाम होगा जी। सगर जी जो कि फ्रांस से हैं और हमेशा साथ देते हैं, थैंक यू सो मच सर।

0: आप इन गानों को पसंद करते हैं, हमें बहुत दिल खुश होता है। ललित जी जो कि यूएसए से हैं और अपने काम पर भी हैं और साथ साथ ये गानों को इन्जॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा गाना आपने भेजा था, जो सबसे पहला गाना था आप ही के नाम हुआ। तो देव जी जुड़े हुए हैं पेरिस से और कह रहे हैं कि ये जो पेरिस है ना, ये प्यार की जगह है, जहाँ पर मतलब प्यार कम नहीं होता, सिर्फ बढ़ता चला जाता है। उसके साथ में वो स्पेशली कह रही हैं कि अमृता जी के लिए ज़रूर गाना चलाएगा। तो अमृता जी शायद कुछ समथिंग स्पेशल जो कि आपको सुनाना चाहते हैं, तो ये जो गाना है नेक्स्ट आपके लिए।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti.

0: 12:31 हो चुके हैं दोस्तों। वो ज़माना, वो गाने और वो आवाज़ें जो आज भी रूह को सुकून देते हैं, ये सितारे आज चमक रहे हैं आपके बीच में। RM2 रेडियो मस्ती के साथ मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आपके मैसेजेस, आपके कॉल सभी हमें मिल पा रहे हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रकाशवंती जी बेल्जियम से, और उन्होंने भी एक बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश की है। साथ में हमारे यालेश सुरीनाम से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा हमारे को अपने मैसेजेस भेजते रहते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे खानों की तस्वीरें भी भेजते रहते हैं। थैंक यू सो मच डियर। और बहुत सारे लोग हैं, आप अपने मैसेजेस भेजते रहिए, एक एक करके हम आपके गाने चलाते रहेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसा नाम जिन्होंने कम से कम 7,000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्होंने पंजाबी में, बंगाली में, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, तेलुगू और कन्नड़ की कई भाषाओं में गाने गाए। पर सबसे बड़ी बात है ये नहीं होती किसने कितने गाने गाए, उनकी बात ये होती है कि उन्होंने गाने किस तरीके से गाए, और आज भी उन गानों को हम याद करते हैं। सभी लोग, सभी सिंगर्स बहुत कुछ गाते हैं, बट कई गाने जो होते हैं ना सीधा रूह तक जाते हैं, और ये ऐसे लेजेंड्स हैं जिनको हम हमेशा तक याद रखेंगे।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:42 हो चुके हैं दोस्तों। अगर अकेले हैं इस वक्त कोई बात नहीं, आरम टू रेट्रो रिदम आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ पूनम। तो अकेलापन कहाँ टिकेगा, भाग जाएगा जब ये गाने सुनेगा। उसको भी पता चलेगा कि हाँ, जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो ऐसे गाने चलते हैं। और कभी कभी किसी की याद आ जाए और ये गाने चल जाएँ, क्या बात है। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय सूरज शर्मा साजदा जी, जो कि अपने बेटे निशाल को बस इतना कहना चाहते हैं, हमेशा अच्छे से पढ़ाई करो, खुश रहो। और साथ में आरजे हंसनी और आरजे शाह के लिए भी कहना चाहते हैं, आप भी, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ और बहुत आपके अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। अरे भाई, वो कलीग्स हैं तो बिल्कुल अच्छे प्रोग्राम्स होते ही होंगे। थैंक यू सो मच आप सबका, जो भी हमें याद करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। किसी भी आरजे को कोई मिस करता है तो मुझे अच्छा लगता है कि उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए। उसके साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ अब्दुल एंड सायरा बानो, और वो भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। उसके साथ में हमारे साथ हैं सीता गीता भोला राम फ्रॉम शेतो बनारस से। उसके साथ में ही प्यारे से हमारे एक और फैमिली बनती जा रही है भाई। ये हमारी जो फैमिली है ना, बहुत बड़ी बन गई है, बस इंजॉय करने चाहिए आपको। तो उसके साथ साथ मैसेजेस करते चाहिए आपको, फिर जोग लगाना होगा, उसमें हम उन सभी के नाम लेंगे जो भी आप, जिनको भी मिस कर रहे हैं। ये गाना आप सबके लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। नैरोबी में कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के समापन समारोह में भाग लिया। कई सरकारी नेताओं ने भी इसमें भाग लिया है। वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों ने मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के साथ बातचीत की। इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसके माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए 23 बिलियन यूरो का निवेश जुटाया गया है और कई साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन में एक अधिक मजबूत, अधिक लचीले और विशेष रूप से अधिक आत्मनिर्भर अफ्रीका पर भी जोर दिया गया। साथ ही महाद्वीप की विकास यात्रा को समर्थन देने के लिए अफ्रीकी वित्तीय तंत्रों को विकसित करने की बढ़ती इच्छा पर भी बातचीत चली। समापन समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से सामूहिक अत्याचारों की स्थिति में अपने वीटो अधिकार के वॉलंटरी सस्पेंशन की अपील करने वाली फ्रांसीसी मैक्सिकन पहल में मॉरिशसीय गणराज्य के शामिल होने के निर्णय

0: की सराहना की। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल कल शाम राष्ट्रीय सभा में सुधार के साथ पारित किया गया। ये विधेयक नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रावधान करता है, जो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल एक्ट का स्थान लेगा। नए कानून का उद्देश्य मंत्री कविराज सुकों के अनुसार नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित नीतियों को मजबूत बनाना तथा मॉरिशस को एक अधिक लचीली, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना है। विदेश की खबरों में, भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है, जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर भारत के उत्तरी राज्यों में तूफान और भारी बारिश होने लगी है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। लातापी रोड भिजेवेजिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती लौतन पेराशिनामजा ग्रुप और जो तारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान लातापी रोड भिजेवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्का की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:10 AM। शिवाला रोड खाथोसेवा में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिद्वंती गिरधारी जो बिद्वंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान शिवाला रोड खाथोसेवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:03 PM। अडल्फ होलांड स्ट्रीट ग्रैंड रिवियर नॉर्थ वेस्ट में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधा सूर्या पेदाशिनाम गणेश और जो मानती प्रोफेसर योगा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उठाई जा रही है। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:11 हो चुके हैं दोस्तों, आपकी मोहब्बत को और गहरा करने वाले ये जो गाने हैं ना, जो दिल की बात कह देते हैं, जो कभी जुबान पर नहीं आते। मैं हूँ आपके साथ पूनम, बस प्यार में रहिए और हमेशा खुश रहिए। चलिए भाई, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आकाश मनसुख जी, अपनी मामा प्रीति, पापा क्रिश, टू सिस्टर उर्वशी एंड विश्नी, जीजू विनिस एंड किहान को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और यही कहते हैं, अरे जीजा हो तो क्या हुआ, हम भी तो साले हैं। सो स्वीट, ऐसे ही मैसेजेस आप भेजते रहिए, क्योंकि यही प्यार और मोहब्बत सबको खुश करती है और आपको भी, आपके दिल को भी खुश करती है। और जीजे तो होते ही सालों के लिए बहुत ही लाडले होते हैं, तो बस ऐसे इंजॉय कीजिए। सीता गीता भोलाराम फैमिली सातो बनारस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है, बिल्कुल चलाने जा रहे हैं। सरोज जी, मोनिका जी, कुशल, राजन, पूनम, वेनिसा, सभी ये प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं और उन्होंने भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश की, हम वो भी चलाने वाले हैं। अभिजीत मेस्निल भी इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए। और जना जी जो कि इस समय अपनी मम्मा को मिस कर रही है और अपनी बेटियों और सिर्फ सरन फैमिली को प्यारा सा गाना

0: कहना सुनाना चाहती हूँ, और साथ में मुझे इतना सारा एक ब्रोकन हार्ट वाला मैसेज भेजा और कहा हाँ आपने मेरा गाना नहीं चलाया ना, अरे ऐसे नाराज़ नहीं होते, आप हमारे बिना कहाँ रहेंगे और हम आपके बिना कहाँ जाएंगे, ऐसे साथ रहो। थोड़ा सा मूड बनाना पड़ता है, सबके गाने पुराने नए दोनों मिक्स करने पड़ते हैं, तो बस ऐसे ही यही मत सोचा करो कि हम आपके गाने नहीं चलाएंगे, हम आपके सारे गाने चलाएंगे, आपकी हर फरमाइश पूरी होगी, बस हंसते मुस्कुराते रहो, इंजॉय करो। ये आपका गाना सीमा मूवी से।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: प्रकाश वंदी जी, बेल्जियम से आपके लिए स्पेशली

0: रेट्रो रिदम।
1: आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ और चित्रा जी की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना, ये तेरा घर ये मेरा घर। सच बात है कि जब घर में खुशियाँ होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है, विश्वास होता है, वो घर को सच में देखना चाहिए। उससे कुछ लोग इंस्पायर होते हैं और अपने घर को भी वैसे ही बनाना चाहते हैं। और कई बार जाएं घर के अंदर, कितना भी कूड़ा वूड़ा बिखरा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस उस घर में प्यार मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए। चलिए भैया, आपके प्यार को तो हम यहाँ तरसते हैं आपके मैसेजेस के थ्रू। तो इस समय आज ज्ञान दत्त गोविंद जी का बर्थडे है और उनकी वाइफ शोभा कह रही हैं और उनकी बेटी प्रीति कह रही हैं कि पापा हम आप हो तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ शाम को पार्टी ज़रूर चाहिए। और सच बात है, बेटियां ऐसी ही होती हैं, शैतानियां करती हैं। बेटियों को कुछ नहीं चाहिए होता है, पर पापा की मोहब्बत ज़रूर ही चाहिए होती है। तो चलिए भाई, शाम को पार्टी करेंगे तो हमें भी याद करिएगा। और हमारी पूरी MBC की टीम की तरफ से भी हम आपको विश करते हैं, सर हमेशा खुश रहें, इन्जॉय करें अपनी ज़िंदगी को।

0: साथ में स्वीटी बेबी अंजलि का भी आज बर्थडे है और मामा काव्या कह रही हैं उनको कि अरे भाई एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाना इस छुटकी सी बिटिया के लिए। बिल्कुल चलाएंगे, हैप्पी बर्थडे बच्चा, आप भी हमेशा खुश रहें। विश्वानी धुमन जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और इंदिरा, शारदा, नीला, प्रतिभा और गीता जी को भी एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और सबको यही कहना चाहती हैं कि ख्याल रखो बाहर ठंड हो गई है। यस, बिल्कुल हो गई है। इंजॉय कीजिए आप सबका ये प्यारा सा गाना।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप हमारे साथ जुड़े हैं आनम टू रेडियो मस्ती पर आपके फेवरेट प्रोग्राम रेट्रो रिदम में। भाई रेट्रो रिदम एक ऐसा प्रोग्राम है ना जहाँ पे दिल तो खुश होता ही है और पुराने वो गाने चलते हैं जिसके लिए हम इंतज़ार बहुत टाइम से कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं हर्षिता रीना फुलवन को एक बस इतना कहना चाहते हैं, आई एम मिसिंग यू वेरी मच और आई डोंट नो कि क्यों मिस कर रहे हैं, शायद वो आज ऑफिस नहीं गई या कहीं पर कहीं ना कहीं स्टक हो गए होंगे, बट आप मिस मत करो, फटाफट से उनके पास पहुँचो। हर्षिता आपको बहुत याद करिए। नीलेश रोशन, विशेष और राज भी इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। ज्योति जी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। अफीज अहमद जो कि एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। डैरन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लोवेश एंड अबादू फैमिली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। ललिता जीतन जी भी जुड़ी हुई हैं। कल्याणी जी अपने हस्बैंड कृष्ण को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। श्याम देवी चरण जी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ में यलेश जी की मम्मी का आज बर्थडे है और वो कह रहे हैं मामा आई लव यू, सो स्वीट। ऐसा ही होता है कि हर बच्चे को अपनी मामा को प्यार करना ही चाहिए, पर कुछ केक कट करो, कुछ बनाओ घर में, कुछ तैयारी करो, फिर उसके बाद होता है बर्थडे। पर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हम यही कहेंगे, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे मैम, इन्जॉय करो अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ अपना बर्थडे। ये गाना आप सबके लिए इन्जॉय कीजिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:54 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हुए हैं अपने ही इस प्यारे से प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, और मैं थी आपके साथ पूनम। ये गाने जो है ना, आपके दिल के साथ बने रहें, यही मुझे खुशी होगी, और आप भी अपने घर में हंसते भर कहते ना खुश रहें, यही इन्जॉयमेंट होनी चाहिए। अभी ये लास्ट सॉन्ग जो है नावेद की तरफ से प्रवीण को, और प्रवीण की तरफ से नावेद को जाएगा मेरी तरफ से, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अगर मुझे उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे। तब तक मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी टाइम पर। इंजॉय कीजिए ये लास्ट सॉन्ग। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. नैरोबी में कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के समापन समारोह में भाग लिया. कई सरकारी नेताओं ने भी इसमें भाग लिया है. वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों ने मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बातचीत की. इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों पर विशेष रूप से चर्चाएं की गई, जिसके माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए 23 बिलियन यूरो का निवेश जुटाया जा सका है. कल देर रात इन्फ्लुएंसर अली रॉयल्स को गिरफ्तार कर लिया गया. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के बाद ऐसा किया गया. कंटेंट क्रिएटर पर भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों से लाभ उठाने की कोशिश करने तथा कुछ फायदे हासिल करने का संदेह है. सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय कौंदे मास्क के निवासी अली

0: की, जिन्हें उनकी असली नाम से जाना जाता है, पहले से ही एक बेहद विवादित शख्सियत रहे हैं। उनका नाम अक्सर पूर्व सरकार के करीबियों के साथ जुड़ा जाता है। उन्होंने उस एक वीडियो बनाया था, उन्होंने इस वीडियो को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रसिद्ध मिसिए मुस्तास ऑडियो क्लिप को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें आज सुबह फ्लाक की अदालत में पेश किया गया। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल कल शाम राष्ट्रसभा में सुधार के साथ पारित किया गया। ये विधेयक नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रावधान करता है, जो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल एक्ट का स्थान लेगा। नए कानून का उद्देश्य, मंत्री कावी राजसुको के अनुसार, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित नीतियों को मजबूत बनाना तथा मॉरिशस को एक अधिक लचीली, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना है। विदेश की खबरों में, भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है, जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आमतौर पर ऐसा वहां पर नहीं होता है और इस मौसम के दौरान वहां पर गर्मी नहीं होती। वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉय रोड लिस्कालिये में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद्र उचाना, जो हामुती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे संजीव उचाना के मकान रॉय रोड लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लासोजिन लिस्कालिये की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:10 AM। शिवाला रोड 400 में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती गिरधारी, जो बिदवंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान शिवाला रोड 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:03 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, and NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.

वेल फ्रेंड्स, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आतिफ असलम की आवाज़. जैसे देखिए आतिफ असलम हमारे सभी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं. विशिंग यू ऑल अ लवली आफ्टरनून. वेडनेसडे आफ्टरनून है एंड आई डू होप दैट यू आर एंजॉयिंग दिस आफ्टरनून. वैसे आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स तो हम लेकर आते हैं और आपका साथ हमारे लिए खास एंड स्पेशल. सभी के लिए कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स यानी कि बॉलीवुड के कुछ लेटेस्ट गाने आपके लिए हम परोस रहे हैं. एंड यहाँ पर नानी शोभा हमारा साथ दे रही हैं, रिमेम्बरिंग उनके हबी. एंड ऑफकोर्स कहते हैं कि यादें हमेशा रहती है. तो चलिए नानी शोभा, नेक्स्ट गाना होगा आपके नाम. एंड बॉलीवुड के लेटेस्ट गानों के साथ आपको एंटरटेन कर रहे हैं. सो सभी लिसनर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर. सो नॉट टू फॉरगेट, कुछ प्यारे गाने हैं आपके नाम और अगर आप भी साथ दे रहे हैं मैसेजेस डेडिकेशंस तो बनते हैं. कुछ ही देर में बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक लेकर आएंगे. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़ ऑन रेडियो मस्ती.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: That was कचियां कचियां, एक ब्यूटीफुल इंडी पॉप इन द वॉइस ऑफ जुबिन नौटियाल. और इस गाने को सुनने के बाद लगता है एक्ट्रेस मौनी रॉय की हालत अभी कुछ ऐसी ही है. मौनी रॉय की सूरज नाम्बियार संग 4 साल की शादी टूट गई है और बीते दिन से मीडिया में दोनों के सेपरेशन की खबरें फैली हुई है. दरअसल फैंस ने नोटिस किया था कि इस जोड़ी ने एक दूसरे को इंस्टा पर अनफॉलो कर दिया है. यहाँ तक कि सूरज ने मौनी संग शादी की सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दी थी. बाद में सूरज ने अपने इंस्टा को भी डीएक्टिवेट कर दिया और अब वहीं लग रहा है कि मौनी ने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट कर फाइनली सूरज संग अपने जो तलाक है उसको कन्फर्म कर दिया है. दरअसल सूरज संग तलाक की खबरों के एक दिन बाद मौनी ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट किया है. हालांकि उन्होंने डायरेक्टली अपने तलाक के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन एक्ट्रेस ने लिखा है, सभी मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट है कि झूठे नरेटिव पब्लिश ना करें और हमें प्राइवेसी और स्पेस दे प्लीज. Humbly requesting all the media houses to not publish false narratives and give us space and privacy, please. So, 4 साल का ये रिश्ता अब finally टूट गया है. So, well, ये तो खबर थी मौनी रॉय की और ये हम जानते हैं दैट छोटे पर्दे से उनकी शुरुआत हुई और उसके बाद बड़े पर्दे पर उनकी सर्जरीज जो है वो काफ़ी चर्चाओं में रही. उनके जो प्लास्टिक सर्जरीज है हमेशा उसके बारे में बात होती रही, लेकिन अभी के लिए शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज जहाँ पर 4 साल की उनकी शादी अब टूट गई है. चलिए दोस्तों, यहाँ पर बी टाउन की खबरें आप तक पहुँचा रहे हैं. कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ. 2:33 मैं हूँ परी आपके साथ. अगर आप भी कनेक्टेड हैं, यहाँ पर कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए एंड बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

So well, this one goes out for all the fans of Salman Khan. Matrubhumi कब रिलीज होगी इसके लिए तो करना है थोड़ा सा इंतजार, लेकिन थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उसके बाद लेटेस्ट म्यूजिक एंड लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती.

0: more music in the mix.
1: Aaj Azadi Hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
3: RM2 Radio Musti.
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
5: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
7: North, South,
8: 103.5.
7: East, West,
8: 96.4.
7: Center,
8: 99.4.
4: RM2
3: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
7: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
9: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
10: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। अंतरिम प्रधानमंत्री आज्ञा नव माही ने याद दिलाया कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए सुधारों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को मजबूत करना है। उन्होंने उन सभी लोगों के प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया जिन्हें दुर्व्यवहार के पीड़ितों का मार्गदर्शन और उनकी सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक और महत्वपूर्ण घोषणा गाविन ग्लोवर ने कल की। उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल तैयार है। ये विधेयक जिसमें स्त्री हत्या के मामलों को भी शामिल किया जाएगा एक महीने के अंदर अंदर तैयार होगा और संसद में प्रस्तुत किया जाना है। ये घोषणा पोटली नगर पालिका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गई। कल देर रात इन्फ्लुएंसर आली रॉयल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की

0: जांच के बाद उनके गिरफ्तारी की गई। कंटेंट क्रिएटर पर भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों से लाभ उठाने की कोशिश करने तथा कुछ फायदे हासिल करने का संदेह है। सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय कोडेमास्क के निवासी याली बुलाकी पहले से ही एक बेहद विवादित शख्सियत रहे हैं। उनका नाम अक्सर पूर्व सरकार के करीबियों के बीच चर्चा में रहता था। उन्होंने इस वीडियो को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रसिद्ध मिसिय मुस्तासुडु क्लिप को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें आज सुबह फ्लाक की अदालत में पेश किया गया। आर्टेरियल हाइपरटेंशन दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं और अक्सर इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी ये हृदय संबंधी रोग खासकर स्ट्रोक के प्रमुख कारणों में से हैं। मॉरिशस में लगभग हर तीन में से एक व्यक्ति इस बीमारी के साथ जी रहा है और युवाओं में भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मे मेजरमेंट मंथ के तहत, जो कि एक वैश्विक जागरूकता और स्क्रीनिंग अभियान है, इस बुधवार को बुबा सेंट रोजिल में नगर पालिका में एक अभियान का आयोजन किया गया। विदेश की खबरों में, भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है, जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आमतौर पर साल के इस अवधि के दौरान इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
5: So well, ladies and gentlemen, a warm welcome. 3:07, Wednesday afternoon, 13th of May. So यहाँ पर खूबसूरत गाने आपके लिए, कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। एंड आई डू होप दैट ये जो वेडनेसडे है आपका अभी अच्छे से बीत रहा है, काम में फंसे हुए हैं या फिर कहीं बाहर निकले हुए हैं, जहां कहीं से भी ट्यून इन किया है, गुड म्यूजिक के साथ लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती टिल 4 PM।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर भूत बंगला डे 26 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आमिर खान को 8 साल की मशक्कत के बाद मिली एक आध हिट। अब अक्षय की भूत बंगला ने उसे भी दे दी है मात। यही खबर लेकर आए हैं आपके लिए। सो अक्षय कुमार की पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप रही, लेकिन इस साल एक्टर को एक आध हिट जरूर मिल गई है। और दरअसल अक्षय कुमार की भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। एक्टर की पिछली बड़ी फिल्मों की तुलना में कम बजट होने के बावजूद ये हॉरर कॉमेडी फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आसानी से मुनाफा कमाने में कामयाब रही है। इस बीच इसने पिछले 8 सालों में आमिर खान की एकमात्र सफल फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। सो वेल 267.81 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ भूत बंगला ने आसानी से 2025 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर 266.06 करोड़ जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन रहा उसको पार कर लिया है। और गौरतलब है कि पिछले 8 सालों में आमिर खान की ये एकमात्र सफल फिल्म है, क्योंकि इससे पहले सितारे जमीन पर और उससे पहले उनकी जो आखिरी सफल फिल्म थी वो थी सीक्रेट सुपरस्टार जो 2017 में आई थी। और अब बहुत जल्द अक्षय कुमार स्टार फिल्म सलमान खान की रेस 3 270.76 करोड़ रुपीस को भी पीछे छोड़ने वाली है, यानी कि ब्लॉकबस्टर हो चुकी है भूत बंगला। वैसे इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर तो ये फिल्म खरी नहीं उतरी है, लेकिन एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट होने में ये फिल्म जरूर कामयाब रही है। वैसे काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी प्रियदर्शन एंड अक्षय कुमार की जोड़ी के साथ, जहां पर फिल्म को मिले काफी मिक्स्ड रिव्यूज। कुछ को ये फिल्म अच्छी लगी, कुछ को ये फिल्म बहुत ज़्यादा बोरिंग लगी। किसी ने कहा कि फर्स्ट हाफ काफ़ी एंटरटेनिंग है, सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और कुछ लोगों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई। लेकिन मिक्स कलेक्शन के साथ ये फिल्म ने हिट होने का जो उनका आंकड़ा है वो पार जरूर कर लिया है। सो अभी के लिए तो हिट की लिस्ट में शामिल हो चुकी है भूत बंगला, जिसमें नजर आए अक्षय कुमार।

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti
3: तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:23। शाहिद कपूर, कृति सनन, रश्मिका मंदना स्टार फिल्म कॉकटेल 2 साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। ये फिल्म 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और फिल्म को लेकर रिलीज से पहले अच्छा खासा माहौल बना हुआ है। ऐसे में कॉकटेल 2 से पहले दिन अच्छी कमाई करने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन क्या ये मैनडॉग फिल्म की अब तक की सबसे

बड़ी ओपनिंग फिल्म में शामिल हो पाएगी, इसके लिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और आपको बता दें, शाहिद कपूर स्टार अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा के लिए सबसे फ़ायदे की बात यह है कि ये एक सीक्वल फिल्म है। इसका पहला भाग 2012 में रिलीज़ हुआ था और कमर्शियली काफ़ी हिट रहा था। क्रिटिक्स ने भी कॉकटेल को अच्छा रिव्यू दिया था। ऐसे में हिट फिल्म की सीक्वल होने के नाते कॉकटेल 2 को लेकर भी काफी बस बना हुआ है। वही सीक्वल होने के अलावा कॉकटेल 2 ने एक हिट गाने की बदौलत भी काफी सुर्खियां बटोरी है। दरअसल एल्बम का पहला गाना जब तलक पहले ही चार्टबस्टर में जगह बना चुका है, जिससे फिल्म को जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिल रही है। अब सब आने वाले गाने और उसके ट्रेलर पर डिपेंड करता है, और अगर बाकी प्रमोशनल कंटेंट भी अच्छे साबित हुए तो फिर कॉकटेल 2 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12 से 15 करोड़ रुपए की कलेक्शन से अपना खाता खोल सकती है। यानी कि अभी के लिए तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही है, एंड दैट्स कॉकटेल 2 के साथ। चलिए दोस्तों, कॉकटेल 2 अभी के लिए तो बज में बना हुआ है, लेकिन कॉकटेल द ओरिजिनल वर्जन जो आया था इन 2012, इसको हम कैसे भूल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्टिंग ऑफ दीपिका पादुकोण, उनका साथ दिया सैफ अली खान, डायना पेंटी ने। सो वेल, अभी के लिए तो इस गाने को हम डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम, फॉर एवरी वन हुज कनेक्टेड रेडियो मस्ती के साथ। बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए आपके इस आफ्टरनून में लगाते हैं थोड़ा सा तड़का। एंजॉय दिस वन।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti.
2: एंड वेल आफ्टर कॉकटेल 2 जो जून में रिलीज होने वाली है, इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है एक और मच अवेटेड फिल्म पति पत्नी और वो दो, डायरेक्टेड बाय मुदस्सर अजीज। फिल्म में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना, वामिका गबी, सारा अली खान एंड रकुल प्रीत सिंह। एक क्याटिक लव स्टोरी है ये, क्या होने वाला है ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन दिस वन अ वेरी पॉपुलर इंडी पॉप जो शामिल हुआ है इस फिल्म में, और इसमें नजर आई हैं कुछ स्टार्स फ्रॉम द फिल्म एंड ऑफकोर्स आवाज़े बादशाह, क्रिश मुंडाल एंड इप्शिता की। इसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप सभी के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेटेस्ट ट्रैक्स के साथ बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए। मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज।

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: खिंचे खिंचे हुए रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। हमें भुला दो, हमें भुला दो, मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है।
1: Welcome, welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Feels a must.

0: RM2 Radio Musti
1: Hit Music Only
2: Radio Musti Feels a Musti
1: Bombay Talkies
3: Radio Musti
0: Radio Musti
4: तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:47 एंड इट्स टाइम टू रीड आउट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस जो आए हैं ऑन 5499124. क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस डेडिकेशंस कहाँ से भेजते हैं आप, यानी कि दिल में आपके इतने प्यार है और ये प्यार हम तक पहुँच ही जाता है एंड वी डू फील द लव. सो थैंक यू सो मच जो इतना प्यार आप हम तक हमेशा पहुँचाते हैं. चलिए दोस्तों, आफ्टरनून टाइम है और इस वक्त बहुत सारे हमारे लिसनर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं. सो विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल आफ्टरनून एंड अ वंडरफुल टाइम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. मैं हूं परी, आपके साथ साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 PM, यानी कि बस कुछ और मिनटों तक, चंद और मिनट आपके साथ. कहते हैं कि यहाँ पर आपके जो गाने हैं काफ़ी पसंद कर रहे हैं. बी टाउन की अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद. थैंक यू मिस्टर सूरज, हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो गाना होगा आपके नाम. कहते हैं दुआ है कि हर कोई ऐसा मिले जो उसे कभी रोने ना दे. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ललिता जीतन ला वॉन्ट जैसे. किसके बारे में इतना सोच रही हैं आप? और हम तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई रोने ना दे, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आए और आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे. सो सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू ललिता जी, साथ देने के लिए शुक्रिया. कुमार देवचन एंजॉइंग द प्रोग्राम अपनी गर्मा गर्म इलायची चाय के साथ एंड डेडिकेट कर रहे हैं गाना फॉर लवली डैड पापा श्याम देवचन ऑफ पेबे एंड लव यू पापा एवरी डे. दैट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज, ये है आपके पापा के नाम. साथ ही कहते हैं गाना हो जाए फ्रॉम अ वंडरफुल फिल्म. ओके, आप बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं? आई ट्राई माई बेस्ट, वादा नहीं करते हैं, कोशिश करेंगे अगर चला पाए तो. यलेश साथ दे रहे हैं आप सूर्य नाम से और डेडिकेट करना चाहते हैं गाना पूरी MBC टीम के नाम. इक्वली गुजार फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सूर्य नाम. थैंक यू सो मच यलेश, साथ देने के लिए ऑलवेज ऑन रेडियो मस्ती. एंड मिस्टर सांगा साथ दे रहे हैं आप फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम द नगरी ऑफ लव कह सकते हैं. सो फ्रांस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप. सो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड ऐसे ही मैसेजेस डेडिकेशंस हम तक पहुंचाते रहिए. कुछ प्यारे गाने आपके नाम परी का साथ है right here on Radio Musti till 4 PM.

So well friends, with next track, it's time for Pari to say goodbye. It's 3:55 और मेरे बाद आ रही है मनुष्मा लेकर योर अवतार वाइब्स. So कहीं मत जाइए, stay connected RM2 रेडियो मस्ती के साथ. चलिए गुड म्यूजिक आपके लिए राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती टू गेट यू इन द वेनसडे मूड, टू गेट यू इन योर आफ्टरनून मूड. यही गाना है और इसी गाने के साथ परी साइनिंग ऑफ. हैव अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Time check, it's 4 p.m. चलिए बिगिन सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपके साथ पूजा, नमस्कार आपको.
7: नमस्कार मनीषमा, सभी को मेरा नमस्कार. नैरोबी में कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के समापन समारोह में भाग लिया. कई सरकारी नेताओं ने इसमें भाग लिया. वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ बातचीत की. इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसके माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए 23 बिलियन यूरो का निवेश जुटाया गया और कई साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए. समापन समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम का आभार प्रकट किया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से सामूहिक अत्याचारों की स्थिति में अपने वेटो अधिकार के वॉलंटरी सस्पेंशन की अपील करने वाली फ्रांसीसी मैक्सिकन पहल में मॉरिशस गणराज्य के शामिल होने के निर्णय की सराहना की. अंतरिम प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी ने याद दिलाया कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए सुधारों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को मजबूत करना है. उन्होंने उन सभी लोगों से प्रशिक्षण के महत्व पर भी जोर दिया जिन्हें दुर्व्यवहार के पीड़ितों का मार्गदर्शन और सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है. एक और महत्वपूर्ण घोषणा गाविन ग्लोवर ने की है. उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल तैयार है. ये विधेयक जिसमें स्त्री हत्या के मामलों को भी शामिल किया जाएगा, एक महीने के अंदर संसद में प्रस्तुत किया जाना है. कल देर रात इन्फ्लुएंसर अली रॉयल को गिरफ्तार किया गया. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई. कंटेंट क्रिएटर पर भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों से लाभ उठाने की कोशिश करने तथा कुछ फायदे हासिल करने का संदेह है. सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय कौंडमास के निवासी अली बुलाकी, जिन्हें उनके असली नाम से जाना जाता है, पहले से ही एक बेहद विवादित शख्सियत रहे हैं. उनका नाम अक्सर पूर्व सरकार के करीबियों के बीच चर्चा में रहता था. और विदेश की खबरों में, भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है. जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी, वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी. वहीं दूसरी ओर भारत के उत्तरी राज्यों में तूफान और भारी बारिश होने लगी है. तो ये थी अब तक की खबरें. नमस्कार और शुभ दिन.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2,
3: Radio Musti.

0: टुकुर देकर भी गाड़ी चलाइएगा। गुड आफ्टरनून, 4:08 हो रहे हैं, आप जुड़े हैं इनटू रेडियो मस्ट टू गिव यू द राइट वाइब्स एंड द राइट इंस्पिरेशन। वी आर हियर बैक विद अ वंडरफुल सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स आपके आफ्टरनून को और भी मस्त बनाने के लिए। वेलकम, स्वागत है आप सभी का।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: पुजारी।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।
4: जी चलिए यहाँ पर आप सभी को खुश करने के लिए आ गए थे। अ गुड बैग ऑफर टू यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, ये गेम ही स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। अ गुड बैग वर्थ 3,500 रुपीज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक 2026, जहाँ पर ये कैंपेन है to raise awareness about road dangers and promote more responsible behavior to save lives. Abhi ke liye, I got here the sawal, the question for you to be able to win this goodie bag. Ladies and gentlemen, sawal ye raha in this afternoon of 13th of May. So, what does defensive driving mean? What does defensive ड्राइविंग मीन? सारे के सारे पॉसिबल जवाब आप दे सकते हैं ऑन दिस नंबर 549 and 1294 पर, और जो सबसे ज़्यादा करीबी है विद द राइट आंसर विल चूज द वन एंड ऑफ कोर्स गिव यू द विनिंग गिफ्ट। अभी के लिए ऑल द बेस्ट गुड आउट टू यू। आपके पास बस 5 या फिर 6 मिनट है, फिर वापस आ जाएंगे आपके लिए लेकर लकी विनर का नाम।

थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि व्हाट डज डिफेंसिव ड्राइविंग मीन फॉर यू. वैसे द राइट आंसर इज ड्राइविंग व्हाइल एंटिसिपेटिंग डेंजर्स और मिस्टेक बाय अदर्स, अवॉइडिंग रिस्क एंड डेवलपिंग एंड अडॉप्टिंग अ कॉशियस एटीट्यूड. तो एगन लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से ये जो सवाल है हमने पूछा था सुबह को, अभी के लिए द राइट क्वेश्चन कमिंग अप, ध्यान से सुनिएगा दिस वन फॉर यू टू बी एबल टू विन दिस गुडी बैग. व्हाई इज स्पीडिंग डेंजरस, व्हाई इज स्पीडिंग डेंजरस, बताइएगा ऑन दिस नंबर 5499 1294 पर. ऑल द बेस्ट विद योर फुल नेम एंड एड्रेस.

0: शताब्दी हो गई, बल्ले बल्ले।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
3: रेडियो मस्ती।

0: मजे करो, एंजॉय करो। यहाँ पर 4:22 हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल, व्हाई इज स्पीडिंग डेंजरस, एंड द राइट आंसर इज बिकॉज ब्रेकिंग डिस्टेंस बिकम्स लॉन्गर एंड द सेवरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स increases. This is the closest answer. This is the right answer. Thank you so much. हमारे जो dear listeners हैं, जिन्होंने इतने सारे participative messages भेजे हैं, long messages, and the closest one and the right answer लेकर आई है हमारे बीच the lucky winner. उनका नाम है सानिया बकोहली, जो रहती है सर्बिया. Congratulations. जी हाँ, वेरी गुड। क्या पार्टिसिपेट किया है, सही जवाब देकर आप जीत गई है ये गुडी बैग वर्थ 3,000 rupees, 3,500 rupees ऑफर टू यू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। और जी हाँ, यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहती हूँ मैं कि अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं अपने गुडी बैग्स को, तो गुडी बैग्स टू बी कलेक्टेड आज फ्रॉम द 14th of May 2026, 14 मई यानी कि कल से, as from tomorrow you can come and collect your gift, your goodie bags. Thank you so much for participating. Have a wonderful afternoon. Tune into RM2 Radio Masti.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2
1: Radio Masti.

0: स्टार वाइव्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2,
2: रेडियो मस्ती,
3: पार्टी ऑन, लेट्स पार्टी, पार्टी ऑन, लेट्स पार्टी।

0: Let's party with us here on RM2 Radio. मस्ती हमेशा मौका मिलता है हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए. हम आपको ये मौका दे देते हैं हर रोज. दिल से साथ निभाने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके लिए. बढ़ते हैं सो स्पोर्ट्स अपडेट्स की ओर. Here we go.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
2: Sports News, latest updates.
3: Sports News.
4: Radio Musti in the mix.
5: Good afternoon. RM2 listeners, let's check out the latest from the sports world.
6: प्रीमियर लीग में जाने के लिए आखिरी टिकट हल या सावंतन के नाम होगा. कल चैंपियनशिप प्लेऑफ सेमीफाइनल में एक्स्ट्रा टाइम में जाकर सावंतन ने मिडल्सब्रो को 2-1 से हराया. फुल टाइम स्कोर 1-1 रहा. फाइनल 23 मई को वेम्बले स्टेडियम में. याद दिला दें, चैंपियनशिप से कोवेंट्री और इप्सविच प्रीमियर लीग में प्रमोट हो चुके हैं. वुल्व्स और बर्नले डिमोट हो चुके हैं. टोटनहम हॉटस्पर या वेस्ट हैम में से एक टीम चैंपियनशिप के कारावास में जाएगी. स्पेन के ला लीगा में कल 3 मैच खेले गए. सेल्टा वीगो 2, लेवेंटे 3, बेटिस 2, एल्चे 1, ओसासुना 1, एथलेटिको मैड्रिड 2. इंडियन सुपर लीग में मोहन बगान और इंटर काशी के बीच मैच ड्रॉ 0-0. आज प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी खेलेगा क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ. मैनचेस्टर सिटी अभी आर्सेनल से 5 अंक

0: पीछे है। आज जीत हुई तो केवल दो अंकों का गैप होगा, बचेंगे केवल दो मैच। पेप ग्वार्डियोला ने कहा कि अंत तक लड़ेंगे, आर्सेनल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इटली के कोपा इटालिया में भी आज एक मैच है, इसका फाइनल है, ये होगा लाजियो और इंटर मिलान के बीच। फ्रांस के लीग एम ब्रेस्ट स्ट्रासबूर लॉन्स पेरिस सेंट जर्मेन, अभी इन दोनों के बीच 6 अंकों का फासला है। गोल डिफरेंस पेरिस सेंट जर्मेन का बेहतर है, पेरिस सेंट जर्मेन के लिए आज चैंपियन बनने की रात हो सकती है। योजे मोरिनो रियल मैड्रिड के एकदम करीब, उसके साथ जोड़ने के लिए तैयार है, फाइनल निगोशिएशंस चल रहे हैं। 13 सालों के बाद द स्पेशल वन फिर से रियल मैड्रिड में का बॉस बन सकता है, अभी मोरिनो बेंफिका में है। प्रीमियर लीग के सीनियर रेफरी हावर्ड हेब वेब ने कहा कि लिवरपूल के खिलाफ सिस्को के हाथ से लगने के बाद गोल स्कोर किया गया, पर वह के पास काफी एविडेंस नहीं था, वह का फैसला गलत रहा, उसने खुद कहा। इटालियन ओपन टेनिस की बात करें, इटालियन ओपन में अब क्वार्टर फाइनल्स के मैच खेले जाएंगे। कल कास्पर रूड ने मुसेती को हराया, सियस्टिया की जीत ओस्टापेंको पर। फिर होम फेवरेट और वर्ल्ड नंबर वन यानी सीनर भी क्वालिफाई हुआ अपने हमवतन पेलेग्रिनो को हराकर। कोको गोफ ने अंद्रीवा को हराया। मेडवेडेव, रूबलेव, दाउदेरी, काचानोव भी जीत पाए। आज क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाएंगे, पेगुला का मुकाबला श्वातेक से, कास्पर रूड खेलेगा काचानोव के खिलाफ। वितोलिना, रिबाकिना, जोदा, दाउदेरी यानी सिनर कल खेलेगा रूबलेव के खिलाफ, और सियस्टिया का मुकाबला गोफ से ये कल होगा, और मेडवेडेव का मुकाबला लांडालूस से। ये इटालियन ओपन है। क्रिकेट में आईपीएल के ग्रुप स्टेज में कल गुजरात टाइटंस ने 82 रनों से सनराइजर्स हैदराबाद को मसल डाला। गुजरात टाइटंस के 168 रनों के जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम केवल 86 पर ऑल आउट हुई। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट एथलेटिक्स, जो गाना में आक्रा में अफ्रीकन चैंपियनशिप चल रहे हैं, और हमारा हमवतन स्प्रिंटर नोआ बीबी आज 100 मीटर के सेमीफाइनल में होगा, उससे काफ़ी उम्मीदें हैं, खासतौर पर अफ्रीकी स्तर पर एथलेटिक्स में मॉरिशस का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। So that's it, the latest from the sports world. I'll catch you tomorrow morning. Till then, have a good time. But don't forget, World Cup updates coming up.
1: Get ready for the biggest World Cup ever.
2: 2026 FIFA World Cup.
1: Pehli baar hongi 48 teams, 104 matches. Radio Masti ki team ke saath chaliye United States, Canada, or Mexico.
0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी में सह मेजबान को होस्ट कनाडा के साथ स्विट्जरलैंड, कतर और बोस्निया हर्जेगोविना है। कनाडा तीसरी बार के लिए वर्ल्ड कप में है। मेक्सिको 1986 में केवल ग्रुप स्टेज, कतर 2022 में भी ग्रुप स्टेज से एग्जिट। की प्लेयर्स अल्फोंसो डेविस जो बायर्न म्यूनिख का खिलाड़ी हैं, जोनाथन दाविद जो यूवेंटुस में खेलता है, और इस्माइल कोनी जो मार्सेय का खिलाड़ी हैं। स्विट्जरलैंड के लिए 13th वर्ल्ड कप अपीयरेंस। यूईएफए क्वालिफाइंग ग्रुप से अनडिफीटेड कोच मुरत यकीन को यकीन है कि द नाती बहुत आगे जाएंगे। 3 बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई थी ये टीम। ग्रानिट जाका, मैनुअल अकांजी, गोलकीपर ग्रेगो कोबे की प्लेयर्स हैं इस टीम में। कतर के लिए दूसरा वर्ल्ड कप, कोच हैं जूलियन लोपेटेगी, 2 बार एशियन चैंपियन, की प्लेयर अकरम अफीफ, एशियन प्लेयर ऑफ द ईयर। बोस्निया हर्जेगोविना के लिए दूसरा फीफा वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन, प्लेऑफ से क्वालिफाई हुई है। द ड्रैगन्स अपने 26 खिलाड़ियों के नाम दे चुके हैं। एडिन जेको 40 साल का अनुभवी खिलाड़ी कप्तान है। सो ग्रुप बी में कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड

0: स्विट्जरलैंड बोस्निया हर्जेगोविना के लिए, तो अब इसमें स्विट्जरलैंड क्वालिफाई होने के लिए फेवरेट हैं, पर फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है ये सभी लोग जानते हैं। सो दैट वाज ग्रुप बी इन वर्ल्ड कप 2026।
1: थैंक यू सो मच फॉर द अपडेट्स एंड कीप ट्यूनिंग ऑन टू रेडियो मस्ती। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम अहेड। दिस इज योर इवनिंग शेयर ऑफ थॉट वाइब्स विद मनीष मा।
2: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज़, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स

0: लाइफ में थोड़ी सी पागलपन और थोड़ी सी दीवानीपन जरूरी होता है. वेलकम बैक, वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ योर अफ्तार वाइब्स.
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: यूजर ट्यूनिंग जुआरिंग टू रेडियो मस्ती, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। आपको कहना चाहती हूँ टू टेक वेरी वेरी गुड प्रिकॉशन आउट देयर। हल्की हल्की बारिश कहीं पर अचानक से आ रही है, ये तो आप जानते हैं, चेंज ऑफ सीजन की वजह से हो रही है। चलिए अभी के लिए लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी बैक विद अनदर सॉन्ग। ये है टेकन फ्रॉम द मूवी धूम 3, मलंग फॉर यू, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स ट्रैफिक अपडेट्स।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Le replay, vous connaissez? Le replay, c'est moins de papier. Pas besoin de remplir un nouveau coupon. À noter, les tirages du loto et du loto plus, c'est dans quelques heures. Le jackpot du loto plus est estimé à 11 millions de roupies et celui du loto à environ 25 millions de roupies. 25 millions de roupies au loto. Faites un arrêt chez votre détaillant si vous êtes déjà en déplacement.
4: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
1: RM2
2: Radio Musti
5: Raftar Vibes Filmy Rides
1: RM2
6: Radio Musti

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2,
0: मस्ती।

0: रानी जंगल की रानी। वैसे आप रानी की तरह दिखना चाहते हैं दिस स्टार्ट ऑफ दिस विंटर, तो चलिए हो जाए आपके लिए फैशन टिप्स।
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
0: वैसे जैसे जैसे वेदर कूल हो रहा है, ओवरसाइज स्वेटर्स और लूज शर्ट का ये जो सीजन है ऑफिशियली शुरू हो चुका है। कंफर्टेबल आउटफिट्स चूज करिए जो स्टाइल भी लगे और कोजी भी फील करो। लेडीज के लिए लॉन्ग स्कर्ट्स एक्चुअली विद जैकेट्स या एक हाई वेस्ट जीन विद फिटेड टॉप्स और इस परफेक्ट विंटर के लिए ये कॉम्बिनेशन।

0: बहुत ही जचता है. और गाइस के लिए प्लेन हुडी हम आपको एडवाइस करेंगे विद डेनिम जैकेट या फिर वाइट स्निकर्स या फिर यू नो क्लासिक शूज के साथ भी अच्छा रहेगा. ये सिंपल बट स्मार्ट विंटर लुक क्रिएट कर सकते हैं आप बस स्निकर्स के जरिए. वैसे कलर के लिए क्या करे, मैं ना आई वुड ऑप्ट फॉर बेज एथलीट कलर्स, यू नो बेज ब्राउन मस्टर्ड और ऑलिव ग्रीन. विंटर सीजन के लिए ये बहुत क्लासी लगता है. फैशन सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने का नहीं है लेकिन वेदर के साथ स्मार्टली स्टाइल करने का भी होता है. ओके, बी स्मार्ट, बी फैशनेबल, बी विद अस, स्टे कनेक्टेड.
1: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हरकोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
2: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
3: RM2,
4: Radio Masti.

0: सभी को नमस्कार। 23 मई की तारीख बुधवार का दिन, स्वागत आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नैरोबी में प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट संबंधों पर की चर्चा। अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 समिट का समापन, कई अहम क्षणों के साथ हुआ। मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थिति में वेटो अधिकार को सीमित करने वाली फ्रांस मेक्सिको की पहल का किया समर्थन। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए संशोधन का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को और मजबूत करना है। उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इस बात का ऐलान आरियान नवामाही ने पोर्टवी में किया। विदेश में पश्चिम एशिया संकट, बढ़ते तेल कीमतों और विदेश मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने सोना चांदी पर आयात शुल्क को बढ़ाया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की ये खबर मुख्य है। नैरोबी में आज सुबह प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मॉरिशस केन्या के बीच उत्कृष्ट संबंधों पर चर्चा की, खासकर राजनयिक और व्यापारिक सहयोग को लेकर। उन्होंने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के निष्कर्षों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विलियम रुटो ने इलाकाई सहयोग को और मजबूत करने तथा क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम नैरोबी स्थित स्टेट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ खास मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों तथा मॉरिशस और केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।
2: We had a great meeting with the Prime Minister. We appreciate his coming to Nairobi. We appreciate his ideas and insights and his contribution to the success of this Africa Forward Summit. And it provides an opportunity for us to prosecute our position, joint position of Mauritius, Kenya and the rest of the continent to contextualize our relationship with the rest of the world so that we are better understood. And we can drive our interests using the Africa Union working together, because the situation at the moment requires solidarity.
1: Dr. Navin Ram Gulam ke anusar Kenya kai kshetron mein Mauritius ka ek mahatvapurna sajhedar hai, khas roop se vyapar kshetr mein. Unhone dono deshon ke beech khas sambandhon ko bhi rekhankit kiya.
3: I want to thank President William Ruto, because he's made a wonderful conference. It was very, very positive. As the president said, we need this solidarity. It was a very successful conference, and we're moving forward from this. I reminded President Ruto that I first came to Kenya to meet President Jomo Kenyatta with my father, Sir Seif Sagawa. And he sent Tom Mbuya,
2: yes,
3: who was a constitutional lawyer,
2: yes,
3: to help us draft our constitution before independence.
1: बैठक में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के बाद जारी नैरोबी घोषणा के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उन विभिन्न परियोजनाओं और साझेदारियों को अमल में लाने पर ध्यान दिया गया, जिनकी घोषणा अफ्रीकी महाद्वीप की मजबूती और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से की गई।
0: कोंगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासू एंग्वेसो जुलाई महीने में औपचारिक मिशन पर मॉरिशस आएंगे। इस दौरे को लेकर आज दोपहर बाद नैरोबी में प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और

0: और कोंगो के उप प्रधानमंत्री शोंशा कबुया के बीच चर्चा हुई। मुख्य रूप से कोंगो में आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए मॉरिशस की सहायता तथा मॉरिशस के लिए हाइड्रोकार्बन आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले दिन के दौरान सरकारी नेता ने लुईस मुशिकीवाबो से भेंट की। चर्चा हिंद महासागर क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डे ला फ्रांकोफोनी के सदस्य देशों के विकास और प्रगति पर केंद्रित रही। नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 समिट का समापन कई अहम क्षणों के साथ हुआ। इस दौरान मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थिति में वीटो अधिकार को सीमित करने वाली फ्रांस और मेक्सिको की पहल का समर्थन किया। इस कदम का स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने किया। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने समुद्री देशों के अलायंस के गठन का आह्वान किया। साथ ही अफ्रीका के विकास को तेज करने के लिए 23 बिलियन यूरो के निवेश जुटाए जाने की घोषणा की गई। समापन समारोह अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, ब्लू इकोनॉमी और अफ्रीकी समृद्धि जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में आप सुन पाएंगे।
1: मंगलवार की रात नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का समापन समारोह चला। कई राष्ट्र एवं सरकारी नेता उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल रहे। उनके वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण माहौल में भेंट की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम को इस बात के लिए आभार प्रकट किया कि उन्होंने बंद कमरे में लगे एक प्लीनरी सत्र के दौरान फ्रांसीसी मेक्सिकन पहल के साथ जुटने के मॉरिशस का फैसला लिया है, जिसके तहत राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद के सदस्यों से ये मांग की गई है कि सामूहिक अपराधों के मामलों के लिए वेटो के उनके अधिकार प्रयोग का स्वेच्छा से निलंबित किया जा सके। राष्ट्रपति माक्रों ने कहा, हम सामूहिक रूप से संगठित भी हुए हैं और अपने बयान में सभी सदस्यों का समर्थन है और हम मॉरिशस के प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हैं जो इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। इसका मकसद है राष्ट्रसंघ में सामूहिक अपराधों के मामलों के संबंध में वीटो का हक इस्तेमाल करने की बात समाप्त करना। शिखर बैठक के दौरान डॉक्टर नवीन राम गुलाम के ब्लू इकोनॉमी पर केंद्रित संबोधन का अच्छी तरह स्वागत किया गया। फ्रांस के आउटर आइलैंड एवं मत्स्य उद्योग मंत्री कैथरीन शाबो ने ओशियन राष्ट्र अलायंस कायम किए जाने की मॉरिशियन प्रधानमंत्री की अपील के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमारा सामूहिक भविष्य सागर के साथ है, इसका संरक्षण करना है, शानदार तरीके से आर्थिक विकास करने की संभावनाएं हैं। मॉरिशस समुद्री राष्ट्र है, बहुत कुछ बांट सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी राय भी दी है, सागरीय राष्ट्र गठबंधन एक साथ मिलकर कई विषयों पर विचार कर सकते हैं। इस महाद्वीपीय सम्मेलन की बदौलत अफ्रीका के विकास के लिए 23 बिलियन यूरो के निवेश की उपलब्धता तय हो पाई है। शिखर बैठक की मेजबानी करने वाले केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि संस्करण अफ्रीका की समृद्धि और मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। उन्होंने कहा, हमारे सामने जो कार्य है वो है हर एक वचन को हकीकत में तब्दील करना, बातचीत को लागू करना और अफ्रीका के लोगों के लिए महत्वाकांक्षा को ठोस प्रगति में परिवर्तित करना, क्योंकि अफ्रीका इस बात का इंतजार नहीं कर रहा कि भविष्य में उसे आमंत्रित किया जाए, बल्कि अफ्रीका अपने मित्रों के साथ मिलकर अभी ही भविष्य संवार रहा है। इसके अलावा अफ्रीका में ठेकेदारी सफलता सुनिश्चित करने के वास्ते 5 प्रमुख चुनौतियों पर भी जोर दिया गया। शिक्षा, ऊर्जा, मूल ढांचा, नौकरी और भारी पब्लिक एवं प्राइवेट निवेश।
0: अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री ने सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ ब्लू इकोनॉमी पर एक सत्र की सह अध्यक्षता की। इस चर्चा में अफ्रीका और कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी केवल एक रणनीतिक प्राथमिकता नहीं बल्कि एक अस्तित्व से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
2: L'océan n'est plus un décor géographique. C'est une infrastructure vitale de souveraineté, de sécurité alimentaire de transition

0: वहन ठप हो गया है, हजारों जहाज़ों की गतिविधियां रुक गई हैं। हमारे यहाँ अफ्रीका में महासागर की भौगोलिक स्थिति अलग है, हमारे कॉन्टिनेंट के आधार पर संदर्भ समान नहीं। इस बीच हम सभी उसकी स्थिरता से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आज मध्य पूर्व युद्ध मौजूदा संकट से इसकी स्थिरता भी प्रभावित है। मॉरिशस के पास 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उसकी भूमिगत क्षेत्र से कहीं ज़्यादा है। ज़मीनी तौर पर छोटा राष्ट्र, लेकिन समुद्री तौर पर विशाल। जून 2025 में फ्रांस ने महासागर पर राष्ट्रसंघ के तीसरे कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, साथ में सोमे अफ्रीक पोलो से लगाया गया। तब से हमारी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति माक्रों की मांग की बदौलत बायोडाइवर्सिटी पर BBNG जनवरी 2026 से लागू हैं।
1: Et suite à l'appel du président Macron lors de la conférence sur l'océan, l'accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, aussi connu comme le traité BBNJ Biodiversity Beyond National Jurisdiction, est entré en vigueur en janvier 2026. Il nous revient désormais de mettre le traité en application en conformité avec nos législations nationales. Mais soyons clairs. Pas d'économie bleue durable sans océan vivant. La gouvernance est donc la condition sine qua non.
2: अंतरिम प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी ने कहा कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए संशोधन का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को मजबूत बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों की देखरेख और सहायता से जुड़े सभी लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं अटर्नी जनरल गावी ग्लोवर ने घोषणा की कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल तैयार हैं। उन्होंने बताया कि क्रिमिनल कोड में भी संशोधन किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के मामलों को भी शामिल किया जाएगा। इन बातों का ऐलान फामोमर्स द्वारा पोटवी नगर पालिका में आयोजित घरेलू हिंसा पर के एक सिंपोजियम के दौरान किया गया। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: 4 organes abattus, affectés, les reins, les cœurs, thyroïdes et caillots de sang dans la tête. Et 4 fois dans l'amour. Mon parcours de 26 ans de vie conjugale avec mon époux, qui est malade, on appelle pervers narcissique.
0: Rachel, Sylviane, Rishmi et Zafira, 4 महिलाएं, 4 कहानियां जो घरेलू हिंसा और परित्याग की पीड़ा से जुड़ी हैं। एक गंभीर और ध्यानपूर्वक सुनने वाली सभा के सामने उन्होंने अपने दिल दहला देने वाले अनुभव साझा किए।
3: Mon cousin Rosselon me l'écrit, mon promoté chez papa dans mes bras. Mon place que mon mari lui prend transport pour le travail. Mon demande chaque collègue qui est non, si je n'ai pas contribué pour qu'il puisse avancer une bonne journée pour vos enfants.
0: इन गवाहियों ने सीधे तौर पर आर्यन नावामारी और गाविन ग्लोवर को झकझोर दिया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत किया जाना चाहिए, खासकर चिल्ड्रंस बिल में प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, साथ ही उन लोगों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए जो दुर्व्यवहार के पीड़ितों की सहायता करते हैं।
4: Moi, je trouve femme policière qui plus qui agit plus mauvais qui banjom. Alors, quelquefois, je suis aussi un problème dans la case. Bon, pas connu, mais il y a une raison. Mais je pense que pour tout ça, bonne raison là, nous besoin d'une information appropriée à tout ça, bon du monde qui pour besoin applique la loi. Et là aussi, bon changement qui nous besoin faire dans Children's Act.
0: वहीं अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने घोषणा की कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। अब महिलाओं की हत्या के मामलों को भी पेनल कोड में शामिल किया जाएगा।
5: Il y a une loi très importante parce que accroché à ça, nous pouvons faire un amendement au criminal code pour qui nous introduire l'offense de féminicide. et aussi marital rape. Donc, je pensais qu'il fallait faire ça en même temps.

0: temps pour que ça c'est complémentaire.
1: इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आशा का संदेश देना और पीड़ितों को चुप्पी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: Ensemble, ça va nous partager là pour une fondation Charter on Family Abandonment, un document qui nous pousse soumettre gouvernement pour demander reconnaissance, protection et réforme.
1: सभा में पोर्टवी के बिशप मोनसिनियर जोरोन, अन्य धार्मिक प्रतिनिधि, ओम्बड्सपर्सन फॉर चिल्ड्रन के सदस्य तथा पुलिस बल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने घरेलू हिंसा और परित्याग के खिलाफ सामूहिक रूप से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
3: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अली ह्वायस को कल देर रात गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी FCC की जांच के तहत की गई। कंटेंट क्रिएटर अली बुलाकी पर आरोप हैं कि उन्होंने करप्शन और इन्फ्लुएंस ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों में कुछ लाभ हासिल किए और करने की कोशिश की। कौंदेमास के रहने वाले अली रॉयल्स सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित और विवादित शख्सियत रहे हैं। पिछले सरकार के दौरान उसने दावा किया था कि चर्चित मिसी मुस्ता स्टूडियो क्लिप्स तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, जिसे अदालत फ्लक की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उसकी रिहाई पर आपत्ति व्यक्त की और उसे वापस हिरासत में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अलग अलग श्रमिक संगठनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों के मामलों को लेकर चिंता जताई। कल और आज आयोजित प्रेस सम्मेलनों में उन्होंने सरकार से अपील की कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जाए। देश की खबरों में जो आज सुर्खियों में, उनमें पश्चिम एशिया संकट, बढ़ते तेल कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम पर आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। अब सोना और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़कर 15% कर दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से एक वर्ष तक सोने की खरीद से बचने की अपील की, ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: भारत सरकार ने सोना और चांदी आयात करने पर लगने वाले शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। अब इन कीमती धातुओं पर 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% कृषि मूलढांचा और विकास सेस लगाया जाएगा। कुल आयात शुल्क बढ़कर 15% हो गया है। प्लैटिनम पर भी शुल्क बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और समुद्री व्यापार मार्गों में अस्थिरता बढ़ी है। भारत जो दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है, ऊंची तेल कीमतों और आपूर्ति संकट से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और गैर जरूरी आयात को कम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद से बचने की अपील की है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात करता है, लेकिन हाल के महीनों में शेयर बाजार से कमजोर रिटर्न और सोने की बढ़ती कीमतों के बीच निवेश के तौर पर सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। उद्योग जगत का मानना है कि इस फैसले से सोने और चांदी की मांग में गिरावट आ सकती है और लोग हल्के वजन के गहनों की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि कारोबारियों ने चेतावनी भी दी है कि ऊंचे आयात शुल्क के कारण सोने की तस्करी फिर बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि देश के विदेशी मुद्रा को कच्चे तेल, खाद्य, रक्षा, औद्योगिक कच्चे माल और महत्वपूर्ण टेक्निक जैसे आवश्यक आयातों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
3: जानिए मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश होगी। ऊंचाइयों पर दिन के दौरान भी बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 18 से 20, अधिकतम 24 से 26, तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 28 से 30। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवालेखा के परे 2 मीटर

50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:31 पर, शाम को सूर्यास्त 5:42 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग, तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड पेची गाफरे में, महात्मा गांधी रोड पेची गाफरे में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति भोलू पैदा श्री नाम रामदेव और जो बेबे के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके बेटे विक्की भोलू के मकान महात्मा गांधी रोड पे चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमाल हो कि श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM वाशेरी रोड मोका में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद ओकुल जो ज्ञानदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान वाशेरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM प्रोविडेंस रोड पोस्ट डे फ्लैक में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री धुरंधरनाथ जीवन जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके बेटे अनिकेत जीवन के मकान प्रोविडेंस रोड पोस्ट डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीमोंग पोस्ट डे फ्लैक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयवंती ओबिलक पैदाशी नामो केस और जो माला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति देवनारायण मोहन ओबिलक के मकान ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM कालीमाई रोड बौलो में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की कुमारी भूमावती गोहवादू जो दमन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले टेंपल रोड बेलव्यू मोगैल रहा करती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भतीजे दिनेश शंकर गोहवादू के मकान कालीमाई रोड बौलो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितरों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM सल्फेरिनो नंबर दो वाकवा में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनमंती फोगू पैदाशी नाम भांतवा और जो धनमंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके दामाद उमेश दसोया के मकान सल्फेरिनो नंबर दो वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सल्फेरिनो नंबर 5 वाकवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM Avenue Azalee, Moselman Saint-Jean-Quatre-Bornes में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णचंद सुबनोत

0: इंदा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान एवेन्यू आजाली मोसेल मॉ सें जॉन कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11:30 AM। रॉ रोड लिस्काली में, रॉ रोड लिस्काली में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद उचाना, श्री परमानंद उचाना जो रामोती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे संजीव उचाना के मकान रॉ रोड लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लासोक जीन लिस्काली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। लातापी रोड ब्रिजे वे अजय में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती लोटन पेदाशी नाम जग ग्रुप और जो तारा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान लातापी रोड ब्रिजे वे अजय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। कौलाबू तेरूज में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती नोहर पैदाशी नाम रघुनाथ और जो मोहब्बिया क्वाफ़ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे धर्मसदेव नोहर के मकान कौलाबू तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशा तेरूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। रॉ रोड पोस्ट फ्लैक में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री नवींद्र सोनाराम जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:15 बजे उनके मकान रॉ रोड पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिमोग पुस्तफ्लाक की शमशान भूमि दी जाई जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 9:15। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. RM2,
2: Radio Musti.
3: Quand les petits bébés, moi tu connais prothèse li qu'on tout qui t'sose. Mais Astella donne les mondes digital, moi pas toujours connais au qui s'en la lipe causé ou soit qui lipe guetté. Heureusement, moi recherche télécom et Nam IT Protect est une solution pour prothèse aux enfants quand li online. Zodi, quand li le so potable ou l'on se tablette, moi l'esprit tranquille à cause sécurité aux enfants, peine à prix. Un enfant sans protection sur les réseaux peut être exposé à des dangers bien réels. Cyberbullying, des contenus violents, entre autres. Protégez votre enfant aujourd'hui avec Mighty Protect. Pour plus d'infos, appelez le 8900 ou visitez notre page mighty.mu.
4: Mighty? Mighty, c'est ça!
1: RM2
2: Radio Musti.
5: Raftar Vibes. Filmy Rides.
1: RM2
6: Radio Musti.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: चलिए स्वागत है आप सभी का। 6:35 हुए हैं। दिस इज द लास्ट आवर ऑफ योर अफ्तार वाइब्स। वाइब्स को थोड़ा सा कूल डाउन, मीडियम सिलेक्शन आपके लिए। होप यू हैविंग वंडरफुल वंडरफुल टाइम आउट देयर।

0: जो प्यासे नहीं वो पीते नहीं क्यों पानी. वैसे यहाँ पर इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सिलेक्शन गोइंग ऑन फॉर यू जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट. जुड़ने के लिए इधर से धन्यवाद देना चाहते हैं. हैव अ वंडरफुल टाइम. बस आखिरी गाना आ रहे हैं एंड हमारा आपका साथ यहीं तक था. टिल 7 PM 6:55 होने को है.
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. ऑन आवर टू रेडियो मस्ती माय डियर लवली पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, रात के 7 बज रहे हैं.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
5: Radio Musti.
6: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
6: Feel the Musti.
5: Evening Lounge.
7: Evening Lounge.
6: RM2.
5: Radio Musti.

0: You're listening to a Radio Masti Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2
0: Radio Masti.
3: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम. स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हो चुके हैं. माय डियर लवली लिसनर्स, जी हाँ, हम आ गए हैं आप लोगों का साथ निभाने के लिए इन योर इवनिंग लाउंज. ऑफ कोर्स मैं हूँ गिनिशा, आपका दोस्त, जो रात के 9 तक का साथ देने वाली हूँ इन दिस ब्यूटिफुल शो, जहाँ पे प्यार भरे नगमे हम लेकर आए हैं स्पेशली फॉर यू माय डियर लवली पीपल आउट देयर. हाँ जी, ये प्यार भरे गानों के साथ प्यार भरी बातें भी करेंगे आप लोगों के साथ. और आपके लवली रोमांटिक मैसेजेस कैसे मिस कर सकते हैं उनको, आपके दिल की बात पहुंचाएंगे आपके चाहने वालों तक. जी हाँ दोस्त, ये वादा रहा हमारा अपने ही अनोखे अंदाज में. आप भेजिएगा जरूर. कभी कभी क्या होता है ना, दिल की बातें सुबह तक जब नहीं आ पाती है तो शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता है. लिख कर हमें भेजे. दे आर द मोस्ट वेलकम. योर डेडिकेशन ऑन 5499124 पर 5499294 सेंड मी योर डेडिकेशंस माय डियर एंड लवली लवर्स. तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग नो टाइम, हियर वी गो. द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट स्पेशली टू ऑल आवर डियर लवली लिसनर्स, जो इस वक्त RM2 रेडियो मस्ती से जुड़े हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइव एंड डायरेक्ट अगर बात करनी हो तो यू नो द नंबर राइट, 402 80 35 402 80 35 डायल कीजिए टू टॉक टू गिनी लाइव एंड डायरेक्ट.

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: Well, guys, I really hope that you are really loving these beautiful and lovely गानों के selections जो लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए on RM2 Radio Musti Evening Lounge में. जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ खूबसूरत नगमे हम लेकर आते हैं जो सीधे जाकर दिल पर लग ही जाता है, मजबूर कर लेते हैं आपको to fall in love again and again. किसके साथ ये आप मुझे बताएंगे through your messages on 5499-1294 पर. तो चलिए फिलहाल के लिए ये अगला गाना अरशद के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे. और किसी ने लिखा है, ठीक है डिस्टेंस है, हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए. एंड आई कीप ऑन लविंग यू माय बेब, लव यू सो मच. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम रेबिका. थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट फॉर योर लवली मैसेज. एंड संगर फ्रॉम फ्रांस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ट्यून. एंड द नेक्स्ट वन, एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस मेरे प्यार साहिल के लिए. एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम जानवी. और वो बोल रही है कि आई एम मिसिंग हिम सो सो मच. दैट्स सो स्वीट माय डियर. हे माय आउटस्टैंडिंग बेब, क्या है क्या बात है. हे कैसे हो डैरन श्वेता रविश प्रशा लविशा पर फैमिलीज. द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड टू ऑल दोज जो साथ दे रहे हैं. बस यूं ही साथ देते रहना और खूबसूरत गानों का आप मजा लेते जाना. एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड गुड म्यूजिक जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: बिल्कुल जी, ये थी अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में बाहों की डरमिया। दो दिल क्या हम तो बोलते हैं हजारों दिलों को मिलाने आ गए हैं थ्रू दिस ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग गाने ऑन आवर एमटी रेडियो मस्ती। टाइम बीता चला जा रहा है, 7:28 हो चुके हैं। आज है वेडनेसडे 13th of May 2026। किसका जन्मदिन है आज जरा हमें भी तो बता दो। We're gonna make the person feel special on air right now. 54991294% send me your dedications 402-8335 Dial KJ to talk to me live and direct. ये तेरा घर साथ साथ। अच्छा, अगर ये गाना हो सके तो जरूर प्ले करेंगे। Hey, Gini, I trust you're fine. बिल्कुल ठीक है। So, twins Rayansh and Rayansh के लिए, Rayvansh and Rayansh के लिए, wife Vashini के लिए, and mom Veda, सारे relatives और दोस्तों के लिए, and to you and family as well. Thank you so much, Vijay Poludu from Highlands. Thank you so much, my dear. The next one goes out to you. Hey, Krishti, my beautiful from Rivière des Créoles. The next one, आपके lovely beloved husband के लिए, जिनका नाम है Vikram, आपके twins के लिए, Kaushik and Kaushal. Also आपके लिए, thank you so much, a special message आपके husband के लिए. I am so incredibly here proud to call you my husband, my best friend and my soulmate. I love you always, honey. Kya baat hai? That's so sweet. 402-8335 dial कीजिए. Hello जी, नमस्ते.
1: Hello गिनी
0: साजी,
1: नमस्ते.
0: ये है हमारी प्यारी अनीता from Fake on Flag.
1: Thank you. आप कैसे हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो मेरी जान?
1: हम ठीक हैं, बेबी को देख रही हूँ. वो मुझे ऐसे देख रही है. दादी किससे बात कर रही है?
0: दादी आंटी गिनी से बात कर रही है.
1: छोटी बेबी. हाँ, आंटी गिनू से मैं बात कर रही हूँ.
0: दैट्स स्वीट. नाम क्या है बेबी का?
1: यहाँ पटाखे चल रही है.
0: मैं सुन रही हूँ फिकॉन फ्लैग में.
1: बड़े होटल है ना यहाँ पर.
0: हाँ जी,
1: शायद कोई सेक्शन होगा.
0: कोई भी सेलिब्रेशन में ऐसे. हाँ जी,
1: शायद.
0: तो बताइए हमें कि अगला गाना किसके लिए?
1: आपके लिए, आपकी सभी टीम के लिए, हमारे सारी परिवार के लिए, फ्रेंड के लिए. हमें अच्छी लगी आपसे बात करने के लिए.
0: थैंक यू सो मच. और आप ठीक हो ना? सब कुछ बढ़िया है?
1: मैं सुनने.
0: अच्छा, कोई बात नहीं. चलो ओके, रेडियो पर सुनना, ठीक है?
1: ओके,
0: थैंक यू, बाय बाय. या तो चलिए, जश्न मना रहे हैं फिकॉन फ्लॉक में बहुत सारे लोग. दैट्स अ स्वीट ऑफ फिकॉन फ्लॉक के जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच जी. तो ये अगला गाना आपके नाम, 5491294% मी योर डेडिकेशंस.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Masti.
2: That was such a beautiful track taken from the movie Raja Hindustani जो 1996 में रिलीज हुई थी. जी हाँ, अलका याग्निक की आवाज में आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके और मेरे दिल में यूं ही रहना प्यार बनके. और हम तो चाहते हैं कि रेडियो मस्ती हमेशा आपके दिल में रहे, आपका साथ दे, आपके मनपसंद गानों को लेकर आए हैं. On RM2 Radio Masti, your evening lounge, and that's Kinish on the mic. Just add

0: रही है 5491-294 पर. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर दिल की बात एंड टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट 402-935 डायल कीजिए. हेलो जी, गुड इवनिंग.
1: गुड इवनिंग, हेलो, कैसी हैं आप?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. आप हमारे निर्वी, नहीं क्या नाम है,
1: उषा.
0: आई एम सॉरी उषा जी, कैसे हो आप?
1: कोई बात नहीं,
0: इट्स फ्रॉम कोइची. ना कोइची नहीं, कोइची मुझे याद है.
1: आप ठीक हो? इतने दिन कहाँ थे आप?
0: आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे मधुरी दीक्षित से पूछा गया था, इतने दिन कहाँ थी आप. मैं कर रही थी किसी का इंतजार. मैं यहीं पे होती हूँ, दिन में होती हूँ, पारस से दो इन योर लवली शो रेट्रो रिदम. अगर आप सुनना पसंद करते हो पुराने गाने, ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन मी.
1: हाँ जी,
0: आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ. अभी हम डिनर के प्रिपेयर कर रहे हैं. अभी हम डिनर लेने जा रहे हैं.
0: अच्छी बात है, दैट्स सो स्वीट.
1: आप डिनर ले लिया?
0: हाँ जी, हमने तो खाना खा लिया.
1: Okay.
0: हम बहुत जल्दी खा लेते हैं ना हम. तो बताइए. हाँ जी, किसके लिए?
1: अगला गाना मेरे पति के लिए जो इस समय अभी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं.
0: ये मुझे याद है, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं. हाँ जी,
1: हाँ, प्रवीण उनके नाम है. और सभी सुनने वालों के लिए, मेरी दो बेटियों के लिए और आपके लिए भी, सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए जो इतनी सुंदर सुंदर गाना बजाते हैं और कितने अच्छे से बातें करते हैं.
0: आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के आशीर्वाद है, तभी तो हम इतने प्यार से आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं.
1: जी हाँ,
0: तो मैं आपको विश करूंगी बोन अपेटी. आप एंजॉय कीजिए अपने डिनर को एंड बस यूं ही साथ देते रहना, ठीक है?
1: ओके, थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच, बाय बाय. एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग माय डियर एंड लवली उषा जी एंड बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं, आप भी हमसे बातें कर सकते हैं 5491-294 पर. आप भेजिएगा जरूर अपने डेडिकेशन और डाल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट इन योर इवनिंग लाउंज. हे ब्यूटिफुल, यस माई स्वीट हार्ट. अगला गाना के हस्बैंड क्रीटिश के लिए, तो चलिए जी कृतिश जी के लिए अगला गाना हो जाए. एंड हेलो, नमस्ते.
2: ओह माय गॉड,
0: आपकी ही कमी Hello. थी और आप आ गए तो बाहर आ गए मेरे Hello. भाई. हेलो जी, हेलो, क्या हुआ?
2: Hello.
0: हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है क्या?
2: नहीं जी,
0: पहुंची ना, तभी तो जवाब दे रहे हो.
2: हाँ,
0: अब आ गई आवाज. हाँ जी, तो आप मुझे बताइए राजेश जी, कैसे हो आप?
2: ठीक है जी. आप कहाँ थी उतने बरसों बाद मिले हैं आज?
0: मैं यहीं पे हूँ और कहाँ जाऊंगी.
2: मैं सुनता हूँ,
0: दिन में भी आती हूँ मैं,
2: ऐसा प्रोग्राम में सुनता हूँ.
0: देखो, दिन में नहीं आते हैं तो दिन वाले हमारे लिसनर्स बोलते हैं कि आप तो सिर्फ रात को आते हो, दिन को नहीं आते हो. मैं रात को आती हूँ तो आप लोग खुश हो जाते हैं, दिन वाले गुस्से हो जाते हैं. और जब मैं दिन में आ गई तो
2: खुश है, बिल्कुल नाराज नहीं है जी.
0: मुझे सबका दिल खुश करना है, जो दिन वाले में हमारे लिसनर्स होते हैं ना उनका.
2: प्रॉब्लम है, लोग हमेशा आपका इंतजार करते हैं. आप थोड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, थोड़ा अपना अपनी सब्जेक्ट देंगी.
0: और जो अपनापन, जो रिश्ता आप लोगों के साथ हमने बनाया ना,
2: आप अमेजिंग है.
0: नहीं
2: लगता है कि ये प्रोग्राम में कुछ वजन नहीं है?
0: ऐसा नहीं कहते, हमारी जो प्यारी, हमारी जो
2: एक सखी है,
0: बिल्कुल, जो हमारी
2: आपके कॉलेज.
0: हाँ जी,
2: वो है जो
0: दिव्या.
2: उससे मैंने बोला था कि वो जो गिनिशा उसको नमस्ते बोल दे रहा.
0: ओके, हम मिलते नहीं है ना, जब तक कि वो आ जाते हैं हम चले जाते हैं, लेकिन हम यहीं पे हैं और वो भी जब आते हैं तो पूरे शिद्दत से बड़े प्यार से आप लोगों का साथ देते हैं.
2: अच्छी है, मैंने उससे बोला कि आपकी आवाज में भी उतनी ही बुलंदी है, मगर वो जो दिशा है उसे कह देना नमस्ते.
0: थैंक यू भाई, थैंक यू. तो बताइए फैमिली सब ठीक है?
2: सब कुशल मंगल है जी, आपके दया से, आपके प्रोग्राम के दया से. ओह माय गॉड, कितने
0: मैंने ये
2: बरसात हुई,
0: मैंने ये ओह माय गॉड बहुत मिस किया. एंड यू वोंट बिलीव, आज हम बात कर रहे थे तो जो हमारी बॉस है ना नर्मदा जी, नर्मदा जी वो भी बोल रही थी कि ओह माय गॉड, बड़े टाइम से उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी ऑन रेडियो. मैंने कहा आज जरूर फोन आएगा, उनका फोन जरूर आएगा.
2: ओके,

0: आप मैं एक गीत मांगना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल जी, आप मांग सकते हैं एक गीत, आप मांगिए।
0: बहुत प्यार करते हैं
1: हाय हाय मेरी जान। ओके चलिए, बहुत प्यार करते हैं आपको भी हमारे प्यारे प्यारे भैया जी। तो ओ माय गॉड, तो चलिए मैं आपका गाना,
0: खुश रही हूँ, इतना खुश रही हूँ कि मुझे अनलिमिटेड खुश हुआ।
1: ओह दिस इज
0: बात करने की,
1: मेरे से बात करने के बाद आपको अनलिमिटेड खुशी मिल गई।
0: मुझे आपसे दो लव्स कहने की, कब आपसे बात करूँ, कब आपकी आवाज सुनूं।
1: ओह माय गॉड, आपसे बात करके वाकई मुझे भी अच्छा लगा।
0: भगवान आपको खुश रखे।
1: थैंक यू।
0: सब अपने लिसनर्स को हंसाते रहना और भगवान नतीजे बरकत दे, सभी अपने घर में सभी खुशहाली रहे।
1: बिल्कुल जी, और सेम टू यू, कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, आपने फोन किया, दिल को अच्छा लगा, और ऐसे ही हमेशा हंसते रहना, ठीक है।
0: हंसते तो रहना चाहिए ना जी।
1: बिल्कुल,
0: आप ही तो हंसाते हैं हमें। आप नहीं होंगे तो हम क्या हंसेंगे, ये तो हंसने का एक बहाना चाहिए ना।
1: मैं वो बहाना बन के आने की कोशिश करूंगी आपके लिए। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, आपने फोन किया, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहना। 402-435 डायल कीजिए। हेलो जी, गुड इवनिंग।
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, क्या नाम बताया आपने?
2: धर्मा।
1: धर्मा जी, आपका स्वागत है ऑन रेडियो मस्ती।
2: ओ माय गॉड, बड़ी बच्चिया रहा।
1: हाँ जी, बात है तो सभी लोग लाइन में है ना, कि कब बात करेंगे। अच्छा है, अच्छा है, आप ठीक हो, सब कुछ बढ़िया है? ओके, तो आपकी तबीयत ठीक है आंटी जी?
2: हमारे नातिन खातिर एगो गीत मांगा था।
1: बिल्कुल,
2: वो वेठी जाता बुल्गारी।
1: ओके,
2: यूनिवर्सिटी,
1: ठीक है जी।
2: छोड़ के अभी लोटो में है, जाते
1: तो जाते जाते सुन लेंगे वो अभी।
2: हाँ,
1: तो चलिए उनके लिए। अच्छा, चल कर। ओके,
2: अब सब पाबी जी गोदन के, हमारे बेटा बागुस्वान पटो पिंकी और नाती बा संगे
1: और मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है।
2: आले, आले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फोन आया, हम आपसे बात करके दिल को बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए जी, बाकी जो हमारे लिसनर्स साथ दे रहे हैं, अगर आपको भी हमसे बातें करनी है, थोड़ी सी चिटचाट करनी है, यू नो द नंबर राइट, 402-435 डायल कीजिए, 402-435 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट। कोई भी ऐसा गाना जो अभी आपके जहन में हो, आपको सुनना है, जो बहुत ही रोमांटिक है, जो हमारे शो में फिट होता है, सो व्हाई नॉट, आप बस फरमाइश कीजिए, आपकी फरमाइश आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर।

0: That's in the lovely voice of Sonu Nigam आप लोगों के लिए right now on RMT Radio मस्ती से my dear lovely listeners. फिलहाल के लिए just check your time. Studio की घड़ी में 8 बज रहे हैं.
1: RMT Radio मस्ती.
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
2: And

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: The Chileji, we've got you the best music, the lovely selection for tonight. Bilkul ji, kuch aise hi gine chune nagme hum lekar aaye hain. In your Evening Lounge, specially aap logon ke liye on Radio Musti. To chaliye filhal ke liye check hota hai, 8 baj ke 7 minutes ho chuke hain. Welcome in the second hour of this beautiful show. Ginesha saath de rahi hai, and just to remind you, my lovely listeners, is show ko agar aap live and direct enjoy karna pasand karoge, so join us right now. The show is live on TikTok, RM2 Radio Musti. Yes, we are live on TikTok, RM2 Radio Musti. We have Sakil. He is from Dublin. He's watching us live right now. And we have Dharina, Anju, and we do have Ron, Vikram Dukaran. Yes, you're enjoying the show. Shiva Samru and... okay, let's hope so. Yagla Ganav ke liye Jitin Singh ke liye, and we do have Dinesh Gopi and Vidhi from Rodrigues Island. Wo bolte hain Yagla Ganav unki mamma ke liye Anuradha, Lucky Ram who's actually in Mauritius, apni behen Kavita Ganga ke saath. So big bisou to you, mommy. And chaliye ji 402-935 dial kijiye to talk to me live and direct. Hello, namaste.
3: Hello, namaste,
2: Ginesha. Namaste, Sunita ji. Kaise ho aap?
3: Main theek hoon.
2: Itne dinon ke baad.
3: जी हाँ, इतने दिनों के बाद
2: तो आपका स्वागत. हाँ जी, आपका हाँ. स्वागत है मेरी जान. तो बताइए, आप ठीक हो? सब कुछ बढ़िया है? फैमिली सब ठीक है?
3: सब कुछ ठीक है आपके यहाँ?
2: सब कुछ ठीक है, लेफ्ट में भी राइट हाँ. में भी सब जगह ठीक है.
3: हाँ. तो बता... हो सकता है जल्द से जल्द मिलेंगे आपसे.
2: जरूर,
3: अगर मंगलवार को आप काम करते हैं तो हो सकता है.
2: ठीक है, मैं तो दिन में. हाँ जी, मैं तो यहीं पे रहूंगी दिन में. ठीक है.
3: हाँ.
2: आपका फोन बज रहा है, कोई आपको ढूंढ रहा है अभी?
3: नहीं. मैं बोल रही थी, मुझे मैं इतना याद करती थी, मुझे मालूम नहीं था फिर से मुलाकात होगी.
2: नहीं, हम क्यों नहीं मिलेंगे, मैं तो यही मैं यहीं पे हूँ बहन. आई एम हियर इटसेल्फ, मैं यही कहीं नहीं जा रही हूँ.
3: ऐसा लगता था वजह, जितने नजदीक आते हैं बात करते हैं, अगर नहीं मिलते हैं वो आवाज नहीं सुनते तो नहीं अच्छा लगता.
2: ओ मेरी जान, आपने मुझे मिस किया.
3: लगता है यानी कि सब भी कुछ खो गया है.
2: ओहो, आपने मुझे इतना मिस किया.
3: हाँ, हम सभी को याद करते हैं जी.
2: अच्छी बात है, हम आप लोगों को ज्यादा मिस करते हैं, तभी तो हम आ गए हैं आज रात को. ठीक है.
3: हाँ हाँ, क्या मैं कोई भी गाना मांग सकती हूँ?
2: मांगिए, अगर शो में फिट होते हैं सो व्हाई नॉट, हम जरूर प्ले करेंगे. बताइए.
3: संगम का गाना मांगना चाहती हूँ.
2: पुराना
3: दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा.
2: ओ, कौन सा है ऐसा दोस्त जो दोस्त ना रहा और प्यार भी नहीं रहा? कौन है वो?
3: आप ही तो हो हमारा दोस्त. अच्छा. कभी है यहाँ, कभी नहीं है यहाँ.
2: मैं यहीं पे हूँ, आप ऐसा मत बोलो. हाँ. तो ठीक है, थोड़ी देर में जरूर प्ले करूंगी. ठीक है.
3: कोशिश करना, ये है गाना सुना.
2: कोशिश जरूर करूंगी बहन. बिल्कुल जी, बिल्कुल. थैंक यू
3: टीम के लिए.
2: थैंक यू.
3: और मेरे परिवार के लिए, कौनाथ परिवार के लिए, और कलकनाथ परिवार के लिए, कलेक्सिटी परिवार के लिए, श्रीराम परिवार के लिए, अनाम परिवार के लिए, रामलाल परिवार के लिए, और जितने कोई सुन रहे सभी के लिए मांगना चाहती हूँ ये गीत.
2: Okay.
3: हो सकते हैं शायद बहुत लोग ये गीत बहुत पसंद करते हैं.
2: हम भी पसंद करते हैं.
3: गाना है उसका, फिल्म का गाना है, जल्द से जल्द बजा देना, मैं सुनूंगी.
2: ओके बॉस, आपकी ख्वाहिश सराखों पर.
3: हाँ
2: ठीक है.
3: हाँ, हो सकता है क्या, कब मिलेंगे?
2: आपने बोला ना आप आएंगे ट्यूजडे को या ऐसे ही अगले हफ्ते, तो हम जरूर मिलेंगे.
3: वहाँ पर मैं आपसे मिलूंगी.
2: जरूर मिलेंगे. और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे वेडनेसडे को रात को. ठीक है
3: जी. हाँ, नमस्ते, धन्यवाद.
2: चलिए, थैंक यू सो मच, आपने फोन किया, दिल को अच्छा लगा. बाकी जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं. मुझसे लाइव एंड डायरेक्ट अगर बात करनी हो तो 402-935 डायल कीजिए. और फिलहाल

चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक, जो हम डेडिकेट करना चाहेंगे योगिता एंड विनय दर्शन के लिए. एंड दे लव मी, ओके, थैंक यू सो मच. हम भी उनसे प्यार करते हैं, हम आपसे भी प्यार करते हैं जिसने ये मैसेज भेजा है. एंड लिसनिंग टू मी राइट नाउ फ्रॉम अ कॉम्फर्ट कॉल, सो थैंक यू सो सो मच. एंड आई गेस यू गाइज आर वर्किंग राइट नाउ अट्टाबाजी दर्शन, सो कुराज टू यू माई लवली.

Such a beautiful and mesmerizing track, बहुत ही खूबसूरत सा गाना जुबिन नौटियाल की आवाज में खासकर आपके लिए मिसेस योगिता एंड मिस्टर विनय दर्शन जो साथ दे रहे हैं फ्रॉम कंफर्ट कोर्ट दे आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ. उस टाइम मैंने नाम लिया था लेकिन आप दोनों काफी बिजी थे काम में. यू आर वर्किंग एट तबाशी दर्शन राइट नाउ. तो चलिए जी, आई रियली होप दैट यू गाइस आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक राइट नाउ स्पेशली ऑन आवर एंड रेडियो मस्ती. किनिशा का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. बस यूं ही साथ देते रहना और खूबसूरत गानों का आप मजा लेते जाना. स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 8:21 हो चुके हैं. आई रियली होप जितने भी प्यारे रोमांटिक गाने हम लेकर आए हैं ना, मजबूर कर रहे हैं हम आपको टू फॉल इन लव अगेन एंड अगेन. कुछ गाने ऐसे ही होते हैं, इमोशंस को जगा देते हैं. अब आप मुझे ही देखो, जितनी बार मैं इन खूबसूरत रोमांटिक गानों को सुनती हूँ ना, उनमें मैं खोती चली जाती हूँ. आई स्टार्ट फॉलिंग इन लव अगेन एंड अगेन विद दिस सॉन्ग्स. आपके साथ भी ऐसी कोई बात नहीं है. तो चलिए जी, आई हैव सो मेनी पीपल वॉचिंग मी लाइव राइट नाउ ऑन टिकटॉक आर राइट टू रेडियो मस्ती. अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया सो डू इट राइट नाउ राइट अवे. यू आर गोना बी नोटिफाइड एवरी

0: एंड द शीज गोना बी लाइव। फिलहाल के लिए आई हैव करीना जी, वो बोलती हैं ये अगला गाना उनकी पूरी बोरी सा फैमिली के लिए। अंजनी बोलती हैं अगला गाना उनकी पूरे परिवार के लिए, लोल बिहारी परिवार के लिए, फ्रॉम रोजेल। और अभी आप सिलाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, सो कुआज टू यू एंड तहेर फैमिली के यहाँ मिले थे। एंड अलीना जो है ये अगला गाना आपके लिए, आई होप अभी मैं आपकी फ़ोटो नहीं देख पा रही हूँ, बहुत काफ़ी छोटी है ना इस स्क्रीन पर, इसलिए। हाय दीपशिखा जी, प्रणाम प्रणाम, आपको भी प्रणाम और आपका भी स्वागत है माय स्वीट हार्ट। एंड काफ़ी मज़े किए होंगे ना आज छुट्टी पे जो थी। तो चलिए मिस्टर देव द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड डिप्टी गाउदोरी जी द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड वी हैव रूपा वाचिंग अस लाइव। अली माडुमन हाय, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी केविन फुलचान द नेक्स्ट वन स्पेशली हमारी तरफ से आपके लिए। ए जी ओ जी कैसे हो जी, एकदम बढ़िया है जी, एंड फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम गॉट टू सी यू एट नाइट, यस आई एम हियर स्वीट हार्ट। हाय नेक, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड शंकर शास्त्री जी, ये अगला गाना फॉर यू माई हार्ट। Oh, my sweetheart. Thank you so much. Hi, Kaira. How are you? And Chilly, we have Sarita G as well. She's watching us live. 402-835 Dial KJ to talk to me live and direct. Hello, G. Namaste. Aapka swagat hai. Babu Anatwa G. Kaise ho aap?
1: Namaste, G. Girisa G.
0: Kaise ho? Main to bilkul theek hoon, bhai saab. Aap bataiye, aap kaise ho?
1: भगवान की कृपा से ठीक हूँ।
0: अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए।
1: मॉरिशन लोग ठीक है, ये मेरा प्रार्थना है।
0: मैं तो बोलती हूँ पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं सब ठीक है। हाँ जी, तो बताइए।
1: सभी कुछ अच्छी से चल रहा है, ये झगड़ा वगैरह
0: बिल्कुल सब जगह बस नहीं है। प्यार बांटना चाहिए, जैसे कि हम आ जाते हैं प्यार बांटने के लिए ऑन रेडियो मस्ती।
1: प्यार बांटते थे, चलो क्रीमता
0: बिल्कुल जी। तो बताइए अगला गाना किसके लिए?
1: मेरी बेटी, बेटे, बहू, मेरे बेटे का नाम है विदेश, मेरी बहू का नाम है पूजा, मेरी बेटी का नाम है भावना, और मेरी दामाद का नाम है जैसन, और मेरी बहू, मेरी वाइफ का नाम है उषा।
0: ओके जी, पूरे फैमिली के लिए।
1: और छोटे बच्चे है इनेशिया,
0: हाँ जी,
1: गिरीशा और रिजिया।
0: ओके
1: ओके, एक एक एक एक एक छोटा सा गीत है जो
0: कौन सा
1: फिल्म का नाम है आओ प्यार करे।
0: करेंगे, जरूर करेंगे भाई, प्यार ही तो बात रहे। चलो कौन सा गाना, कौन सा गाना
1: देखिए। नहीं
0: भूल गई भाई साहब।
1: नहीं, खूबसूरत एक फिल्म था।
0: अच्छा, मूवी का नाम है खूबसूरत और गाना कौन सा है?
1: मेरा एक सपना है
0: के देखो तुझे सपनों में।
1: देखिए ठीक होगा।
0: हाँ जी ठीक है, अभी थोड़ी देर में जरूर प्ले करेंगे ये गाना, ठीक है? थैंक यू ब्रो।
1: गिरीशा जी,
0: हाँ जी,
1: चलिए जी, हैं, मैं कर रहा हूं।
0: बिल्कुल अनतवा बाबू जी, थैंक यू सो मच, आपने फोन किया है तो आप एंजॉय करते रहना खूबसूरत गाने, और थोड़ी देर बाद आपका गाना जरूर प्ले करेंगे। थैंक यू सो सो मच फॉर कॉलिंग। और फिलहाल के लिए नेक्स्ट वन गोज़ आउट टू मामा करुणा जो अभी रेडियो सुन रही हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू मामा, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, दैट्स ईशिका। हाय ईशिका, द नेक्स्ट वन आपकी मम्मा के नाम। एंड चलिए जी, अभी के लिए आई हैव हस्बैंड नितीश फ्रॉम लालमाची जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 28th बर्थडे, और दिस ब्यूटीफुल मैसेज इज कमिंग फ्रॉम योर वाइफ संजना की तरफ से। सो विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे माय डियर, एंड बेस्ट विशेस and may God bless you and all those who are celebrating happy birthday. To chaliye ji, baki jitne bhi log hame dekh rahi hain live on TikTok, RM2 Radio Masti, here we go, this one goes out to you. Anuradha Porwar and Kumar Sanu ki awazon mein. Chaliye, let's get back to 90s ke gaano mein. Down Memory Lane, jahan pe aapki khoobsurat yaadon ko aapne saja ke rakha hai. Chaliye, muskuraiye aur enjoy kijiye ye khoobsurat sa gaana.
2: RM2 Radio Masti.

सच अ ब्यूटीफुल एंड बहुत ही खूबसूरत सा ये गाना है, खासकर आप लोगों के लिए, हमारे ट्रू लवर्स के लिए, हुआ ट्रूली मैडली डीपली इन लव, एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग गाने।

0: especially on RM2 Radio Masin your evening lounge. Time beta chala ja raha hai, 8:31 ho chuke hain aur hum pyar, ishq aur mohabbat ki jo baatein kar rahe hain aap logon ke saath, ummeed karte hain ki aapko dil se acha lag raha hai. Aur filhal ke liye barhenge agle gaane ki aur, jo waqai hum dedicate karna chahenge un tamam sunne walon ke naam jo is waqt kisi ko bahut hi zyada miss kar rahe hain ya bahut hi zyada pyar aa raha hai aapko kisi ke upar. Bilkul waise agar hum pyar ki baat kare, pyar सिर्फ हाथ थामने का नाम नहीं है मेरी जान. कभी कभी किसी की आवाज ही दिल को सुकून दे जाती है, किसी का इंतजार भी इबादत लगता है और किसी की खुशी में अपनी दुनिया बस जाती है. दोस्तों, सच्चा प्यार वो एहसास है जो वक्त के साथ और गहरा होता चला जाता है. ना उसमें दिखावा होता है ना मतलब, बस एक दिल होता है जो हर धड़कन के साथ सिर्फ एक ही नाम लेता है. और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, कम वक्त हमारे दिल हमारे सीने में होकर भी ये किसी और के नाम से धड़कता है. वैसे कभी उसकी हंसी सुबह बन जाती है तो कभी उसकी खामोशी रात भर जगा देती है. सच्चा प्यार वो होता है जहाँ मैं धीरे धीरे हम बन जाते हैं. बिल्कुल, जहाँ मैं धीरे धीरे हम बन जाते हैं. और जब कोई आपको बिना बदले एक्सेप्ट कर लेता है, आपकी कमियों को भी मोहब्बत से गले लगा लेता है, आपके आंसुओं को अपनी ये दुआ बना लेता है, तब समझ लेना दिल को उसका हम सफ़र मिल गया. मोहब्बत सिर्फ चंद लम्हों, मोहब्बत जो है सिर्फ चंद लम्हों की बात नहीं है, चंद लम्हों का जुनून नहीं है, ये तो वो सफ़र है जहाँ हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाया जाता है. और यही ये गाना हम लेकर आए हैं आपको एहसास दिलाने के लिए कि प्यार कितनी खूबसूरत है. फिलहाल के लिए जो sit back, close your eyes and enjoy this lovely song.
1: RM2 Radio Masti.

ऐसे गाने जब हम लेकर आते हैं तो वाकई में दिल को बहुत ही करार आ जाता है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। और ऐसे गाने जब दिल से इंसान सुनते हैं तो दिल को राहत भी मिलते हैं। तो चलिए, ये गाना उस इंसान के नाम, जब आप जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आई डोंट नो कहाँ, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, जो भी है आपके जहन में, जिनको भी आप याद कर रही हो, ये गाना खास कर उनके नाम हमारी तरफ से ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। सो गाइस, 7:43 हो चुके हैं, क्या ख्याल है, क्या करें, 4285 डायल कीजिए टू टॉक टू मी लाइव एंड डायरेक्ट, 4285 डायल कीजिए, 5499-1294 पर। चलिए, आई हैव गॉट योर डेडिकेशंस, और अर्ज किया है कि तेरी पहली मुलाकात जिंदगी में एक बहार लाई थी, हर आईने में तेरी तस्वीर मुझे नजर आई थी। लोग कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, हमने तो नींदों में ही प्यार की दुनिया बनाई थी। आकाश चेतन मनसुख बाबू से विशिंग एवरीवन गुड इवनिंग, स्पेशली आपके मनसुख परिवार के लिए। हे गिने, कैसे हो आप, एकदम मस्त, एकदम चकास। हैप्पी बर्थडे आपके बेटे अभिषेक को, जो 12 साल के हो गए। सो विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे।

0: from Radio Masti.
1: बिल्कुल जी, पूरे Radio Masti की तरफ से lots of love and happiness to you and specially best wishes coming from your sister Nishti. And 36 years old के हो गए वो भी, so double celebrations at your place, congratulations. And best wishes coming from Shikshana, Karan, Amevi, Nita, Arav, Ahan, Tish, Shai and Tish की तरफ से. We have Shikshana from Mataba. Thank you so much, my dear. And to all those who are celebrating their birthdays, a happy birthday to you and best wishes on RM2 Radio Masti. So, एक गाना हो जाए हमारे हैंडसम बेटे आरव के लिए और आपके पापा के लिए. रीना फ्रॉम बेलेरिवेस, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. लवली म्यूजिक गिनी. आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन फॉर बुबू रानी श्वेता हुकुम एंड आई जस्ट वांट टू टेल हर आई लव हर सो मच एंड इट्स कमिंग फ्रॉम हस्बैंड रोशन ऑफ बोनाकर. थैंक यू सो मच माय डियर. एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज वेल. एंड नेक्स्ट वन बिलव हस्बैंड के लिए. लेकिन आपका मैसेज अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, आप पहचानोगे. सो ये अगला गाना हस्बैंड सोना के लिए उनकी वाइफ फीडियो की तरफ से, जो कहना चाहती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं. लीमा डुमन इज वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक और एंटर रेडियो मस्ती. मिस्टर डॉलर, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. अंजू हरी एंड शामिला, ये अगला गाना आपके लिए. एंड फॉर दोस जो ऑलरेडी सो भी चुके हैं, सो वी डू हैव एनएस विक्रम एंड स्वीटीना. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑन द लाइव. जया चकोरी जी, ये अगला गाना आपके लिए. We have Harry G and Chile K Varthi, aapke husband Kevin Ram to hal ke liye. And we do have Preeti Mago, ye agla gana specially aapke naam. And Wasan, ye agla gana specially aapke liye, Nitish ke liye bhi. And we do have Lavna Abilak Patpur, she's listening to me at the moment, not feeling so well, so get well soon honey. And ye agla gana aapke liye, aapke husband Nitish ke liye. And we do have Poonam Dini Mohan, she's listening to me right now from Ghana. तो चलिए एक गाना हो जाए. बिल्कुल गाना से सुन रहे हो तो एक गाना से सुन रहे हो तो एक गाना हो जाए आपके नाम. कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाजों में. मेरा एक सपना है कि हम भी आप सभी को देखें हमारे सपनों में. यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन एंड दिस इज
2: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Such a lovely track in the lovely voice of Kumar Sanu. आप लोगों के लिए taken from the movie 1942 Love Story. जहाँ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. और फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए क्योंकि unfortunately we've come to the end of this beautiful show. That's your evening lounge every evening on RMT Radio मस्ती 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक. तो चलिए जी, जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया ऑन टिकटॉक और RMT Radio मस्ती, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. आपके मैसेजेस के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए और फॉर योर प्रेजेंस टू बी देयर विद मी ऑन माय लाइफ. तो चलिए, भगवान हमेशा आपको खुश रखे, आपकी हर दिल की ये ख्वाहिश पूरी हो जाए. एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन यानी कि RMT Radio मस्ती. एंड बस यूँ ही साथ देते रहना. एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. चलिए फिलहाल के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर.
1: You're listening to Radio Masti.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
1: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: स्वागत आप सभी का, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स। और हाल चाल कैसे हैं? दिन तो ख़त्म हो गया लेकिन दूसरा दिन शुरू होने के लिए बिल्कुल बेताब है। लेकिन बीच में जो कुछ घंटे हैं ना, वो हम म्यूज़िक के साथ बिताएंगे। आपका हाथ पकड़कर एक बार फिर से म्यूज़िक की दुनिया की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर बारिश होगी म्यूज़िक की। चलिए तो अगर तैयार हैं तो चलते हैं इस गाने के साथ। डोंट फॉरगेट मिडनाइट तक RM2 पर लेट नाइट ग्रूव्स।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti. तो अभी कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे बारिश की, म्यूजिक की बारिश ही। और वैसे कुछ लोग जिंदगी में बारिश की तरह आते हैं, उनके आने से सब कुछ हरा भरा हो जाता है, उनकी बातें याद बनकर रह जाती हैं। ऐसे लोग नसीब से मिलते हैं, उन्हें कभी इग्नोर मत कीजिए। जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये जो रिश्ता मजबूत करना चाहिए, ये ज़रूर कीजिए। कुछ ऐसी रिश्ता आपका म्यूज़िक के साथ है ना।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक खुद पर यकीन ना होना तब तक दुनिया का कॉन्फिडेंस भी आप पर कम हो जाता है। खुद को समझना सीखिए, आप में भी वो बात है जो किसी और में नहीं, हर कोई यूनिक है। जहाँ सिचुएशन में फिट हैं वो बिल्कुल ठीक है, बस जरूरी है यहाँ से आगे बढ़ना, कुछ सीखना, जिंदगी से एक सबक लेना।

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: रिश्ते बनाना या फिर रिश्तों को मेंटेन करना दो अलग अलग बातें। रिलेशनशिप में गिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस टाइम और अटेंशन की होती है। कुछ छोटी सी बातें, किसी की फिक्र कर लेना, कुछ कह देना, कभी कभी बहुत स्पेशल लगता है। प्यार सिंप्लिसिटी में ही खूबसूरत होता है।

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a musti.
3: आज का दिन धीरे धीरे खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन कल की प्लानिंग थोड़ी सी शुरू हो गई होगी ना। काम की जिम्मेदारी, फिर से भागने की बारी, और भागा दौड़ी के अंदर हर कोई फर्स्ट आना चाहता है। लेकिन साहब, हर बार जीतना जरूरी तो नहीं, कभी कभी सीखना भी अचीवमेंट होता है। फेलियर्स बस डायरेक्शन चेंज करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं। इसलिए खुद को कभी कम मत समझना।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह होना फिक्स्ड है। इस तरह मुश्किलें हमेशा परमानेंट नहीं होती, बस हौसला रखना, उसको जिंदा रखना जरूरी है। अच्छा वक्त रास्ता ढूंढ ही लेता है। कोई भी सिचुएशन टेम्पररी होती है, लेकिन अगर सीख है तो वो होती है परमानेंट।

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: घर वाले अगर आपसे बात करते हैं, आपके साथ वक्त बिताते हैं, तो इससे बड़ा खजाना और क्या हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वक्त निकाल के बस स्क्रीन पे जुड़ जाते हैं। बस उनकी फिक्र जो है उसको वैल्यू देना सीखिए। उनके सेक्रीफाइसेस का भी एक मोल है। बस जिम्मेदारियों में छुप जाना, उनको वक्त न दे पाना, ये गलत होगा। इसलिए कभी कभी फ़ोन या टैबलेट को साइड पे रखकर अपनों से बात कर लेनी चाहिए। रियल कॉन्वर्सेशंस में जो सुकून है वो किसी नोटिफिकेशन में नहीं होता। दिल को भी नेटवर्क चाहिए होता है, और फैमिली का नेटवर्क तो होता है, इतना स्ट्रॉन्ग है।

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: हाँ, वैसे कहते हैं कि अगर कंपटीशन करना है तो खुद से करो, खुद ही से। तो ये देखना कि कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ और परसों कहाँ तक पहुँचना है, बस इंस्पिरेशन मिलती जाएगी और ज़िंदगी अपनी चाल चलती जाएगी। दूसरों को देखकर जलने से बेटर है कि खुद को इम्प्रूव करना सीखें। यही है स्मार्टनेस।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: भाई ये तो नॉर्मल सी बात हो गई कि कहीं भी जाते हैं तो अपना फ़ोन साथ में लेकर जाते हैं और उसके बाद फ़ोटो पे फ़ोटो, फिर चाहे खाने की हो, लोकेशन की हो या फिर अपनों की हो। लेकिन प्यार वो नहीं जो सिर्फ फ़ोटोज़ में दिखे। प्यार वो है जब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपका कोई साथ देने आ जाए, जब मूड ऑफ हो तो कोई आपका ध्यान रखने आ जाए और बिना वजह आपको याद करे। वही रिश्ता दिल के करीब होता है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: कहते हैं कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने तो वो हैं जो सोने नहीं देते। तो दिल में अगर जुनून हो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं, बस मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। चलिए आज हो सकता है कुछ काम पूरे ना हुए हों, लेकिन जिंदगी फिर से एक मौका देगी कल, जहां पर आप लगाएंगे अपनी मेहनत और अकल, और अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक दिन जरूर होंगे सफल।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.
1: वैसे कहते हैं कि जिंदगी की असली लग्जरी पीस है, ना कि सिर्फ पैसा या फेम। सुकून से सोना, दिल से हंसना और अपनों के साथ वक्त बिताना, यही तो है richness.

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: किसी को जज करने से पहले उसकी कहानी जान लेनी बहुत जरूरी है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश हो जरूरी तो नहीं, और हर खामोश इंसान रूड हो ये भी तो जरूरी नहीं। थोड़ी सी काइंडनेस सब कुछ चाहिए होती है।

साथ निभाता गया होगा, भाई हम भी आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। बस म्यूज़िक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये बिना कुछ कहे दिल की बात को समझ लेता है, कभी यादें ताज़ा कर देता है, कभी दर्द हल्का कर देता है, और कभी मुस्कुराने की एक वजह बन जाता है। तो चलिए हमें भी वजह मिलेगी कि आपसे एक बार फिर से मिलें जल्द ही RM2 पर। लेकिन फिलहाल लेट नाइट ग्रूव्स यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ध्यान देने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, नमस्कार।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feel the Masti. Radio Masti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.
1: It

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

RM2 Radio Musty in the mix. Radio

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: हाय हाय,
1: एक बात बताऊं दोस्त?
2: बता बता, जल्दी बता।
1: एक बार वो मुझे मिलने आई।
2: अच्छा?
1: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
2: फिर क्या हुआ?
1: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: अरे भाई एक दिन उसका टेलीफोन आया।
1: हाँ।
0: कहने लगी
1: हेलो हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ।
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है आओ।
0: हाँ? जब मैं वहाँ पहुँचा हाँ? तो पता लगा वहाँ उसकी सिवा कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था।
1: हाँ?
0: वो थी।
1: हाँ?
0: वो थी।
1: मतलब
0: मैं था।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.